नेचुरल

0: SBS South Asian.
1: चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
4: चले गए चले गए

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिहान अलवी, आप हैं SBS उर्दू के साथ. उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, जहां जहां होंगे एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे. आज की नशरियात हसब मामूल एक घंटे तक जारी रहेंगी, मगर बहुत से ऐसे सेगमेंट भी होते हैं जो हम बाकी हफ्ते के दिन में आपके लिए तैयार करते हैं मगर इस एक घंटे के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते. तो उनके सुनने के तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर एक आम सा तरीका यह है कि अगर आपने मोबाइल पर सुनना चाहें तो SBS ऑडियो के नाम से मोबाइल ऐप मौजूद है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस पर उर्दू सेट कर लीजिए. इसके अलावा आप हमारे वेब पेज पर भी जा सकते हैं, इसकी तफसील हम अभी आगे चलकर भी आपको बताते रहेंगे. आइए पहले नज़र डाल लें कि आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं. जी हाँ, हसब मामूल पहले ख़बरों का मुख्तसर बुलेटिन होगा और फिर आपको कुछ गीत संगीत भी प्रोग्राम में और सूफी कलाम भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. इसके अलावा जिक्र करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से फुटबॉल का, कि किस तरह यह दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल जब मुजाफाती मैदानों और मुकामी क्लबों से ग्रास रूट तक पहुंचता है तो हर उम्र और काबिलियत के आम खिलाड़ी इसमें खेलते हैं. अगर आप भी इस खेल में दिलचस्पी लेते हैं तो किस तरह आप यहां ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए फुटबॉल का हिस्सा बन सकते हैं. आज यकुम जुलाई से नया माली साल शुरू हो चुका है, जिक्र करेंगे माशी उमूर और टैक्सेस का और बात करेंगे कारोबारी मालकान और ख़ास तौर पे छोटे कारोबारी मालकान के मसाइल का. और साथ ही बातचीत में आप ये भी सुनिएगा कि टैक्स रिटर्न के लिए कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न करने जा रहे हैं तो आज का सेगमेंट ज़रूर आपके लिए कारामत रहेगा. SBS ऑन डिमांड का आज जिक्र करेंगे. ये एक SBS का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप दुनिया भर का फन देख सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी, बॉलीवुड की हिंदी, पंजाबी फिल्में, ड्रामे, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्री सभी कुछ मौजूद रहती हैं और सब टाइटलिंग भी मौजूद रहती है. तो इसका जिक्र भी करेंगे कौन कौन से ख़ास सेगमेंट्स वहां पर मौजूद हैं आपके लिए देखने के लिए. SBS उर्दू का अपना भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौजूद है, आप उस पर जाकर भी बहुत सारी वीडियोज़ और रील्स देख सकते हैं. ये तो कुछ मुख्तसर तफसील थी कि आगे हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं. हसब मामूल पहले चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ. यकुम जुलाई बरोज बुध की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रिहान अलवी. हिजब इख्तलाफ के अराकीन ने पार्लियामान ने खबरदार किया है कि लेबर पार्टी की 5% डिपॉजिट की हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने वाले ऑस्ट्रेलियन शहरी जल्द ऐसे रिहायशी कर्जों के बोझ तले आ सकते हैं जिनकी मालियत उनके घरों की मौजूदा कीमत से ज़्यादा हो जाएगी. जायदाद की कीमतों के तजियाती इदारे की नई रिपोर्ट के मुताबिक जून में मुल्क भर में घरों की कीमतों में 0.4% कमी रिकॉर्ड की गई, जो दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी माहाना कमी है. रिपोर्ट में महंगाई, शरह सूद और टैक्स पॉलिसी में नई तब्दीलियों को घरों की कीमतों में कमी की बड़ी वजूहात करार दिया गया. वफाकी हुकूमत का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक फौजियों के लिए मावनती निज़ाम में कई दहाइयों के बाद सबसे बड़ी असलाहत आज यकुम जुलाई से नाफिजुल अमल हो रही हैं. साबिक फौजियों और उनके ख़ानदानों के फलाह व बहबूद के लिए नई एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है. वजीर बराए साबिक फौजी उमूर मैट कियोक का कहना है कि इस इदारे का मकसद साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मावनती खिदमात से बेहतर अंदाज में जोड़ना है, जिनमें खुदकशी की रोकथाम, बरवक्त मुदाखलत और फौजी ज़िंदगी से आम शहरी की ज़िंदगी में मुंतकली पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी. नौजायदा बच्चों के वालदैन अब हुकूमत की जानिब से 6 माह की तनख्वाह समेत पेरेंटल लीव के अहल होंगे। पेरेंटल लीव की हद 24 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। ये तब्दीली एंथोनी एल्बनीज हुकूमत के मरहलावार तौसी मंसूबे का आखिरी मरहला है, जिसके तहत अब ये मुद्दत 6 माह कर दी गई है। ग्रीन्स पार्टी वफाकी हुकूमत के सोशल मीडिया कवानीन को मजीद वसत देने के लिए मुहिम चला रही है, ताकि सोशल मीडिया कंपनियों के तरीक़ेकार को भी कानून के दायरे में लाया जा सके। ग्रीन्स की सेनेटर सारा हैंसन यंग का कहना है कि मौजूदा कवानीन जो 16 साल से कम उम्र बच्चों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकते हैं, बच्चों और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स पर थाईलैंड में 17 साल लड़की की लाश सूटकेस में मिलने के बाद कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस के मुताबिक साहिली शहर पटाया में शनिचर की सुबह रेलवे ट्रैक के करीब फेंके गए एक बैग से लड़की की लाश मिली, जिसे मुबैना तौर पर कत्ल के बाद सूटकेस में रखा गया था। थाई पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के सिलसिले में साइमन पीटर कारमेन को बैंकॉक के एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुबैना तौर पर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे तालुकाते आम्मा का कहना है कि 30 जून को अफगान तालिबान हुकूमत ने बलूचिस्तान में सरहद पार 4 इब्तदाई नौयत के ड्रोन तैयारे भेजे, जिन्हें पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त निशानदही के बाद नाकाम बना दिया। बुध को जारी किए गए बयान में दावा किया गया कि बगैर पायलट के ये ड्रोन्स अफगान तालिबान की जानिब से अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और हिमायत के सिलसिले का हिस्सा थे। अफगानिस्तान ने इन खबरों पर फ़िलहाल तबसरा नहीं किया। वेनेजुएला में आने वाले 2 बड़े जलजलों के नतीजों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,943 हो गई है, जबकि लागुरा के इलाके में तकरीबन 10,000 अफराद लापता हैं। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव वेटकॉक और जैरड कुशनर दोहा पहुंच गए हैं, ताहम ईरानी वफ से उनकी मुलाकात तय नहीं हो सकी। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुजाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने भी ईरानी वफ के दोहा जाने की तो तस्दीक की है, ताहम अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की तरदीद की है। और अब खेल। आलमी फुटबॉल कप 2026 के नॉकआउट मरहले में फ्रांस ने स्वीडन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम ने खवातीन के बैन अलावामी 2020 आलमी कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। ये थी 1 जुलाई की अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। मैं हूँ रेहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। जी हाँ, आप SBS उर्दू पर हमारी बराह रास्त नशरियात अगर सुन रहे हैं तो ये सपहर 3 बजे बुध और जुमे को नशर होती है SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात। हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, अगर आप दोपहर में सुन रहे हैं तो ये बराह रास्त प्रोग्राम है, और अगर आप SBS 2 पर सुन रहे हैं तो ये शाम को आप 6 बजे सुन रहे हैं प्रोग्राम बुध के दिन। और जो लोग इसे दोबारा सुनना चाहें, वो कैचअप करना चाहें, वो हमारे वेब पेज पर भी जा सकते हैं sbs.com.au/urdu पर। और इससे पहले कि कुछ और संजीदा और अहम मौजूआत की तरफ और वक्फों की तरफ हम जाएँ, क्यों ना आपकी समातों की नज़र एक सूफ़ी कलाम करें। ये एक मनकबत है जिसे फरहान शाह ने अपनी आवाज़ से सजाया है। वो ऑस्ट्रेलिया के बड़े मारूफ सूफ़ी गुलकारों में शुमार होता है उनका। उन्होंने फिल्मों में भी अपनी गुलकारी का जौहर दिखाया है। आइए सुनते हैं फरहान शाह की ये कव्वाली, जो एक मनकबत की शक्ल में है, और ज़िंदगी कितनी हसीन है एक फ़िल्म में इसको पिक्चराइज़ भी किया गया है।

0: अभी आप फरहान शाह की आवाज़ में मनकबत सुन रहे थे। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनेंगे कि फ़ुटबॉल किस तरह दुनिया में लोगों को जोड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह इस खेल से ताल्लुक़ बना सकते हैं। इसके अलावा हम नए माली साल के हवाले से भी माशी उमूर और स्मॉल बिजनेसिस के मसाइल का जिक्र करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न का भी, और इस तजुर्बे से पहली बार गुजरने वालों का तजुर्बा भी आपको शेयर करवाएंगे। कुछ गीत और नगमे भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, और जिक्र आखिर में रहेगा SBS ऑन डिमांड पर मौजूद फिल्मों और फीचर्स का, और ये सब कुछ आप सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। और अगर आपने कोई सेगमेंट मिस कर दिया है तो sbs.com.au/urdu पर जाकर आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Unscripted. Untamed, unforgettable.
7: Alone Season 4, The Arctic.
8: Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
9: It's a whole new frontier.
10: Oh my God!
6: The absolutely real.
11: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
12: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
0: मैं हूँ रेहान अलवी, आप हैं SBS उर्दू के साथ, और आइए वक्त ज़ाय किए बगैर लिए चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया को एक जगह जमा कर रहा है। फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल माना जाता है, लेकिन फुटबॉल शुरू होता है मजाफाती मैदानों और मुकामी क्लबों से, जहाँ हर उम्र और काबिलियत के आम खिलाड़ी खेलते हैं। खुश आमदीद ऑस्ट्रेलिया में। जानिए कि कैसे आप भी इस तरह की मशगूलियात में और फुटबॉल के साथ शामिल हो सकते हैं। वर्दा वकार की ज़बानी ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में इसकी तफसील सुनते हैं।
13: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
14: सामईन, ये मुबालगा नहीं है जब हम सुनते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देता है। आखिरकार फुटबॉल को दुनिया का मकबूल तरीन खेल तो कहा जाता है, लेकिन फुटबॉल हकीकत में मुजाफाती मैदानों और मकामी क्लब्स में शुरू होती है, जहां हर उम्र और सलाहियत के खिलाड़ी खेलते हैं। खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया की आज की किस्त में जानेंगे आप इन खिलाड़ियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। पहला और सबसे अहम सवाल तय कर लें, क्या हम इस खेल को फुटबॉल कहें या सॉकर?
15: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
14: ये थी हैदर ग्रेक्यो, फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो कहती हैं फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो इंतहाई शमूलियत वाला है, जिसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 1.9 million खिलाड़ी शामिल हैं।
15: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
14: फुटबॉल की मकबूलियत इस बात में है कि ये किस तरह आसानी से लोगों को पसे मंजर, जिन्स, उम्र या सलाहियत से कता नज़र एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर देता है। आप 4 या 5 साल की उम्र से ग्रास रूट सतह पर खेल सकते हैं, या अगर आपकी नकलो हमल पहले जैसी नहीं रही तो वॉकिंग फुटबॉल टीम में भी शामिल हो सकते हैं। ये सोचकर भी अच्छा लग रहा है, फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के पास आपके आगाज के लिए काफी वसाइल मौजूद हैं। उनकी वेबसाइट पर आपको प्ले फुटबॉल प्लेटफॉर्म मिलेगा। मोहतरमा ग्रियोक वजाहत करती हैं।
15: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
14: Play Football पर आप अपने इलाके के किसी क्लब में रजिस्टर हो सकते हैं। इस खेल का नाम ही शमूलियत है। नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद के लिए प्रोग्राम्स मौजूद हैं। फर्स्ट नेशन खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ज़रूरियात और सलाहियतों के हामिल खिलाड़ियों के लिए और सकाफती और लिसानी तनवो के हामिल अफराद के लिए भी प्रोग्राम दस्तयाब हैं। जब आप फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का दौरा करेंगे तो आप मिनी रूस सेटलमेंट प्रोग्राम और मल्टी कल्चरल यूथ प्रोग्राम से भी आशना हो सकेंगे। एरोन डेबडन फुटबॉल NSW के कम्युनिटी और मेंबर सर्विसेज के सरबराह हैं। वो कहते हैं ये प्रोग्राम फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के साथ चलाए जाने वाले मुफ्त इकदामात में शामिल हैं।
9: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
14: Level Ruchan Teklom ko community football ki taraf khinchne wali cheez samaji shamooliyat ka ehsaas tha. Unhone ek dost ke zariye Queensland mein SSI Multicultural Sports Club ke muft girls football program ke zariye shuruaat ki.
10: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching, and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
14: आप शायद फुटबॉल को सर्दियों के खेल के तौर पर जानते हों, लेकिन सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में 80,000 खिलाड़ी गर्मियों के फुटबॉल के लिए साइन अप करते हैं। गर्मियों या ऑफ सीजन फुटबॉल खुद एक बहुत बड़ा खेल है, एरन डबडन बताते हैं।
9: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year.
14: शायद आप तमाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलते हुए इंडोर खेल को आजमाना चाहें। फिटसल एक छोटे साइज का इंडोर फुटबॉल का वर्जन है। इसको तेज, पुरजोश और हुनरमंद बताया जाता है और इसने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को तरक्की में मदद दी है। ये शायद आप कुछ कम शिद्दत वाला खेल आजमाना चाहें। अगर ऐसा है तो मोहतरमा ग्रियोक कहती हैं कि वॉकिंग फुटबॉल भी बहुत तेजी से मकबूलियत पा रहा है।
15: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
14: खिलाड़ियों की बरादरी सबसे बेहतरीन एहसास है जिसका आप हिस्सा बनते हैं। अहमद हिसारी निया ने फुटबॉल के मकामी काउंसिल के जरिए वॉकिंग फुटबॉल दरियाफ्त किया। ये फुटबॉल की एक ऐसी किस्म है जो दोस्तियां बनवाती है जबकि आपको फिट भी रखती है।
16: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
14: लेकिन आपको इसी ताकत के साथ खेलने की जरूरत नहीं है जिस ताकत के साथ जनाब गिसारी नया खेलते हैं। किसी भी मुकाबलेबाजी या दौड़ने की इजाजत नहीं है और चूंकि इसका असर कम है, ये सेहत के मसाइल या कम एतमाद वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन खेल है। दर हकीकत आप हर उम्र के लिए वॉकिंग फुटबॉल सेशन तलाश कर सकते हैं।
16: They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just gonna try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
14: سامعین خوش آمدید آسٹریلیا کی اس قسط میں آپ جان رہے تھے کہ آسٹریلیا میں فٹ بال کھیلنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور میں ہوں وردہ وقار
13: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے
0: ابھی آپ سن رہے تھے آسٹریلیا ایکسپلین ہم یہ سلسلے وار پوڈ کاسٹ سیریز پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک اور ویب پیج پر بھی موجود رہتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایپل یا اینڈرائڈ ڈیوائسز موجود ہیں تو آپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موجود ہماری موبائل ایپ اپنے موبائل پر انسٹال کر سکتے ہیں یہ بالکل مفت ہے اور اس پر آپ اردو زبان سیٹ کر لیجئے پھر ہمارے سارے پوڈ کاسٹ کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور ہمارا پروگرام بھی آپ مس نہیں کریں گے ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذکر ہوگا نئے مالی سال کے حوالے سے کچھ معاشی معاملات کا جن میں ذکر کریں گے کہ چھوٹے بزنس کرنے والوں کو کس قسم کے مسائل اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کا بھی ذکر ہوگا
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
17: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: sbs.com.au/urdu ko apna online ghar banaye. تازہ ترین خبریں حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ایس بی ایس اردو فیس بک پر
0: ایس بی ایس اردو میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی اب کچھ معاشی مسائل کی طرف ہم چل رہے ہیں اور آج یکم جولائی ہے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے اور ذکر کرتے ہیں معاشی امور اور ٹیکسز کا پہلے بات کرتے ہیں کہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کیا ہیں ولنگونگ کے ڈیلیوری کاروبار کے مالک سلمان احمد بیگ نے افنان ملک سے کی گئی بات چیت میں ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے اپنے غیر اطمینان ہونے مطمئن ہونے کا اظہار بھی کیا آئیے سنتے ہیں اس کی مختصر سی ویڈیو کلپ آڈیو کلپ
19: سامعین آسٹریلیا کے محکمہ اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا بھر میں تقریباً 46% چھوٹے بزنس یعنی چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جنہیں بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے اب بھی بہت سے چھوٹے کاروبار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بزنس کو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کاروباری لاگتوں میں جہاں ایندھن کی قیمتوں نے کاروباروں میں काफ़ी परेशानी का सामान पैदा किया है, वहीं बहुत से मसाइल ऐसे भी हैं जिनकी वजह से कारोबार वापस अपनी जगह पर नहीं जा पा रहे हैं। टॉम ले, जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के सरबरा हैं, उनका कहना है कि आज के इन कारोबारी हालात से मुतालिक सर्वे से ये पता चलता है कि ईंधन की कीमतें कम होने के बावजूद अब भी काफ़ी सारे कारोबार ऐसे मौजूद हैं जो कि जद्दोजहद कर रहे हैं, और इसके पीछे 65% से ज़ायद में स्टाफिंग से मुतालिका अखराजात हैं, जबकि 40% से ज़ायद ने आने वाले मुआशी मामलात, जबकि 19% ने कर्ज को इसकी वजह बताया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बेग, उनका कारोबार पोस्टल सर्विसेज से मुतालिक है।
20: अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो न्यू साउथ वेल्स में जितने भी स्मॉल बिजनेस चलाना पहले की नस्बत काफ़ी महंगा हो गया है। सबसे बड़ा खर्चा जो है वो रेंट का है, जो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज की तनख्वाह और सुपर एनोवेशन का खर्चा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है पहले की नस्बत। और जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है वो फ्यूल है, बिजली और गैस है, जिनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसका असर हर बिजनेस पे पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट और पोस्टल इंडस्ट्री है, इसमें फ्यूल की जो कॉस्ट है इसका बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। और तीसरा सबसे बड़ा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस है, जैसे पब्लिक लायबिलिटी, वर्कर कॉम्पनसेशन और जो गाड़ियों की इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की मेंटेनेंस और रजिस्ट्रेशन और बाकी सर्विस मेंटेनेंस में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को जो है वो अकाउंटिंग फीस, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग चार्जेस और उन और बाकी चीज़ों की जो सब्सक्रिप्शन होती है उसमें भी इजाफा हुआ है।
19: इसके अलावा सलमान का ये भी कहना था कि उनका कारोबार वुलोंगोंग के एक रीजनल इलाके में है, जहां पर उन्हें पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुआशी मामलात में बाकी कारोबारों की नस्बत ज़्यादा खर्च का सामना है। सलमान ने मज़ीद बताया कि किस तरह से वो अपना कारोबार इन हालात में जारी रखे हुए हैं, जब बजट में भी छोटे कारोबारों के लिए कोई ख़ास बड़े ऐलानात नहीं किए गए।
20: गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पैकेजेस और रिबेट ज़रूर दिए हैं, मगर लेकिन इनसे इन से स्मॉल बिजनेस ओनर का ख्याल ये है कि मदद बढ़ती हुई कॉस्ट और बिजनेसेस के मुकाबले में काफ़ी नहीं थी। आज भी बहुत से छोटे कारोबार हैं, उनकी महंगाई और कम प्रॉफिट और बढ़ते हुए जो खर्चे हैं इनकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। हमारी दरख्वास्त ये है गवर्नमेंट से कि जितने भी छोटे कारोबार हैं उनके लिए कोई कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट दी जाए, ख़ास तौर पर एनर्जी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्यूल के रिलीफ में रिलीफ फ्राहम की करें।
19: ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का कहना है कि तकरीबन एक तिहाई कारोबारों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी आमदनी में कमी आई है, जो इंफॉर्मेशन मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन, होलसेल तजारत और रिहाइश और ख़ुराक की खिदमतों के शोबे में सबसे ज़्यादा वाजे थी। मिस्टर ले ने कहा है कि आगे देखते हुए इंफॉर्मेशन मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन, इंतजामी मुआवन खिदमात और रिहाइश और ख़ुराक की खिदमात के शोबों में तकरीबन एक तिहाई कारोबार अगले 4 हफ्तों में भी आमदनी में कमी की तवक्को रखते हैं। कारोबारी हालात और जज्बात जून 2026 का सर्वे तकरीबन 2700 ऑस्ट्रेलियन कारोबारों को भेजा गया, जिसका डेटा 4 जून से 15 जून 2026 के दरमियान ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जमा किया है। एबीएस ने बैरूनी स्टेक होल्डर्स के साथ गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान मिलकर कारोबारी रवैयों में तब्दीली और ईंधन की फराहमी की गैर यकीनी सूरत हाल पर ऑस्ट्रेलिया के रद्दअमल को समझने के लिए ये डेटा शेयर किया है। ये थी आज की पॉडकास्ट, आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूं अफनान मलिक।
0: ये तो था जिक्र कारोबारी मसाइल का, और अब ये बात करते हैं टैक्स रिटर्न की। जी हाँ, ये टैक्स रिटर्न का वक्त है और कई लोग पहली बार टैक्स रिटर्न करेंगे। जानते हैं पिछले साल पहली बार टैक्स रिटर्न करने वाले जुनैद ताहिर का तजुर्बा कैसा रहा, टैक्स रिटर्न और हर ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस और टैक्स एजेंट की फराहम करदा मालूम पर मबनी उर्दू पॉडकास्ट हमारी मोबाइल ऐप या हमारे वेब पेज पर माशी उमूर के सेक्शन में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं टैक्स रिटर्न के बारे में ये बातचीत।
4: हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे टैक्स पेयर मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत की है अपने टैक्स रिटर्न की, और पहला एक्सपीरियंस उनका कैसा गुजरा है इसी बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।
21: जी, मेरा नाम जुनैद ताहिर है और मैं वुलंगोंग NSW में हूँ।
4: जुनैद, आपने ख्याल में पहली बार पिछले साल अपना फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न लॉन्च किया था, आपका तजुर्बा कैसा रहा?
21: मैं एक्चुअली माइग्रेट हुआ था नवंबर 2024 में, यहाँ पे जब मैं पहली दफा आया तो आई हैड टू लॉन्च। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा इस हवाले से टैक्स, क्योंकि जुलाई में फिर आया था लाइक वीजा वगैरह ग्रांट जब हुआ तो मैं बोलूंगा जुलाई का जब टाइम आया तो तब मैंने टैक्स लॉन्च किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मैंने सबसे कुलीग से भी और अपने फ्रेंड से भी सर्कल में म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट किए और उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स शेयर किए, बिकॉज ये टैक्स फाइलिंग सिस्टम वाज एज आई हैव सेड इट्स न्यू टू मी। प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट का जो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड का ग्रुप है तो हमने एक ही को हायर किया जिसने सबके टैक्स फाइल किए, तो यस मैंने हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट से करवाया।
4: रिटर्न के दरमियान में आपके लिए सरप्राइज रही हो या आपको पहले से नहीं मालूम थी, कोई चैलेंज था आपके लिए?
21: जी बिल्कुल, सरप्राइजिंग के लिए बिल्कुल ऐसा मुझे फील हुआ कि पहले जब मैं जो नवंबर में, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर कंसीडर किया जाता है ये फाइनेंशियल ईयर, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग यही था कि मुझे ऐसा लगा कि पूरे जुलाई टू जुलाई जितने भी टैक्स का ब्रैकेट होता है सैलरी का तो टैक्स डिडक्शन उसमें से होगी, बट एक्चुअली वो प्रो रेटा पे हुई जो कि नवंबर से ऑनवर्ड टिल जून 30th तक उन्होंने उस ब्रैकेट के जितने भी मेरी सैलरी उस हिसाब से उसने डिडक्ट किए, तो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी और इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी एज वेल। सरप्राइजिंग तौर पे तो ये जो पहला तो चीज़ यही थी कि प्रो रेटा के हिसाब से जब टैक्स रिटर्न आया तो उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा थी, तो आई वॉज ऑन द क्लाउड 9। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने जब वो टैक्स मेरे जो अकाउंटेंट था एक्सपीरियंस उन्होंने डाला तो वो मैंने पर्सनल वेरिएबल्स भी देखे उसमें, उसने डिडक्शन की हुई थी, उसने मुझसे पूछा था कि इफ़ यू हैव हैड परचेज बाय योरसेल्फ और मतलब ये ऑफिस की सारी स्टफ हैं आपकी जो FRC हमारी कहलाती है, फायर रेजिस्टेंट शर्ट्स वगैरह, तो शूज़ हो गए जिसमें, तो ये सब ये उन्होंने टैक्स डिडक्शन में डाली थी, तो आई थिंक उस वो सारी कैलकुलेशन ATO में होके वो टैक्स रिटर्न देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक सरप्राइजिंग और एक लाइक फॉर मी इट्स अ न्यू लर्निंग। तो मैंने ATO से जो ऑब्वियसली यू नीड टू रजिस्टर अंडर माई गव एप्लीकेशन, तो उसमें ATO को लिंक करा तो उसमें जाके मैंने सारी चीज़ें देखी, तो उसमें जब मैंने एक मॉनिटर किया उसमें ऑब्जर्व किया तो मेरी जितनी भी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो रहा था तो वहाँ पे खुद ही अपडेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ABN और ATO और ये सब चीज़ें वॉज न्यू टू मी, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता नहीं, तो उसके बारे में फिर मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर क्या होता है, तो TFN क्या होता है टैक्स फाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मैंने खुद से पढ़ी थी, तो मैं एक्चुअली TFN पे ही था तो मुझे पता था कि ABN और इन सब चीज़ों का मुझे आई डोंट नीड टू डील ऑन दिस स्टफ, तो मैंने TFN का ही उनको बताया था अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट को ना सब चीज़ों का, तो उसमें इजी होता है कि जो भी TFN में आपकी सैलरी आ रही है उस हिसाब से टैक्स उसमें डिटेक्ट होके आपको रिटर्न आ जाते हैं। और कुछ लोग टैक्स पेइंग कंट्रीज से आते हैं, कुछ नॉन टैक्स पेइंग कंट्रीज से आ रहे हैं, दोनों के लिए मेरे यही एडवाइस है कि आप यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करें, बहुत सारी कंपनीज हैं आउट देयर, यू जस्ट नीड टू रिसर्च, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, आप ये सब चीज़ें जो है वो रिसर्च करें और अपना टैक्स जो है वो कोशिश करें कि उनके थ्रू ही फाइल करवाएं, आप खुद भी मालूमात व्हेन यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस और समथिंग दैट यू आर एक्चुअली इंफॉर्मेटिव ऑफ, तो आप जो है वो खुद फाइल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपकी अपनी चीज़ जो भी होती है वो आपने खुद ही मेहनत करनी होती है उसके लिए, तो अगर आपको स्कैम्स और इन सब से सब चीज़ों से बचना है और हर चीज़ करनी है तो आपने खुद पहले देखना है कि अगला क्या आपके सिस्टम में आपके बिहाफ पे डाल रहा है, तो आपको खुद डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने किसी पे करना नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वायलेशन ऑफ ATO एंड स्टफ, सो यू बेटर नीड टू बी वेरी मेटिकुलस ऑफ इट।
0: जी हाँ, आप जिक्र सुन रहे थे माशी उमूर का, और जब माशी दबाव बढ़ रहा हो और स्ट्रेस दूर करने की ज़रूरत हो तो मौसीकी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है, और मौसीकी में भी हमने चुनाव किया है एक ऐसे गीत का जो डॉलर और रुपए पैसे से जुड़ा है। जी हाँ, शायद आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, आवाज़ अदनान समी खान की है।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: कभी इसमें से एक आध कबूलियत की दुआ हमारे लिए भी निकला है। इस दुआ को यहीं पर छोड़ते हैं और कबूलियत की उम्मीद पर ही मौसीकी से वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद जिक्र रहेगा SBS ऑन डिमांड पर मौजूद फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामों का।
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें।
3: आप हैं रेहान अलवी के साथ और नशियात हैं SBS उर्दू की। आपको एक बात ये भी बताते चलें कि SBS उर्दू का इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी मुतहरिक है और उस पर बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जिनको देखने वालों की तादाद लाखों में है इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको रील्स मिलेंगी वहाँ पर, जो बहुत ही मुख्तसर होती हैं और इन रील्स की रीच बहुत ज़्यादा है। और हमने हाल ही फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, लियारी में होने वाली सरगर्मियों के हवाले से वीडियो पोस्ट की हैं। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ होता रहता है उसके बारे में भी हम वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, छोटी छोटी रील्स बनाते हैं आपके लिए। मीरा की अभी जो फिल्म आई थी साइको, उसके हवाले से मीरा का इंटरव्यू भी वहाँ मौजूद है। और आने वाले दिनों में आप अदाकार, मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी का इंटरव्यू भी वहाँ पर देख सकेंगे, बातचीत देख सकेंगे। और इस तरह के सेगमेंट्स, और बुशरा अंसारी और नुमान एजाज जब यहाँ आए थे उनसे हमने बातचीत की थी, वो उनका इंटरव्यू क्लिप भी मौजूद है और उनकी पॉडकास्ट भी हमारे वेब पेजेस पर मौजूद रहते हैं। और अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर जो ट्रेंड कर रही हैं स्टोरीज़, उनमें सलमान बट, जी हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेट के साबिक कप्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े मसाइल में फिटनेस, तसलसल के फुकदान और पॉलिसियों की कमज़ोरियों की निशानदेही की है, वो काफ़ी लोगों में मकबूल रहा है। इसके अलावा जो सेगमेंट आज आपने सुने उनमें से भी कई हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, जिनमें माशी उमूर और फाइनेंशियल स्ट्रेंज के हवाले से स्टोरीज़ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान रिपोर्ट हम आपके लिए हर फोर्टनाइटली लेकर आते हैं, उसमें खातून डंपर चलाने वाली खातून ड्राइवर की बातचीत है, टैक्स रिटर्न के हवाले से हमारी पोस्ट है और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी पोस्ट आप SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑन डिमांड की तरफ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑन डिमांड के सिलसिले में हम हर सहमाई में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते हैं जो हमारे ऑडियंस के लिए दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं। और उन्हीं में आज हम आपको बहुत सी ऐसी कंटेंट और फीचर्स और ड्रामों और फिल्मों के बारे में बताएंगे जो SBS ऑन डिमांड पर बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। जी हाँ, और ये बहुत दिलचस्प हैं, मालूमाती हैं और इसमें उर्दू हिंदी ज़बान से वाकफियत रखने वालों के लिए बॉलीवुड सिनेमा का लुत्फ भी है। बहुत सी गैर मुल्की फिल्में कई ज़बानों में सब टाइटलिंग के साथ भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इस सहमाई में SBS ऑन डिमांड पर क्या कुछ है।
9: ये SBS उर्दू है, SBS साउथ एशियन पर।
10: SBS ऑन डिमांड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया भर का आर्ट देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की हिंदी और पंजाबी

0: भी फिल्मों के अलावा पाकिस्तानी फिल्में भी मौजूद हैं और उर्दू हिंदी जबान से वाकफियत रखने वालों के लिए बॉलीवुड सिनेमा का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। इस एमआई में जहां SBS ऑन डिमांड पर फिल्में और ड्रामे शायकीन को लुत्फ अंदोज करने के लिए मौजूद हैं, उनमें री मार्टिन की द लास्ट गुड बॉय समेत कुछ अंग्रेजी फिल्में और सीरीज भी हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। नागदीन की जानिब से सराही गई फिल्में हों अंग्रेजी क्राइम थ्रिलर्स हों
1: ये सब आपको SBS
0: नागदीन की जानिब से सराही गई फिल्में हों अंग्रेजी
1: माफ़ कीजिएगा सामाइन, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके बायस हम ये पॉजेज इसमें हो रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं और इसका दूसरा वर्जन हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। इतनी देर में हम आपको लिए चलते हैं गीत और मौसीकी की दुनिया में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको ये मारूफ़ गज़ल।

0: रहे थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये गज़ल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अहम सालिस पाकिस्तान को शुक्रिया और तारीफ़ के अलावा क्या मिलेगा। इस सिलसिले में हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर असगर हयात ने बातचीत की है मारूफ पाकिस्तानी एंकर मखदूम शहाबुद्दीन से, वही आपको सुनवाते हैं।
1: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर।
2: ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने तक बड़े नशीब व फराज आते रहे। इन तमाम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया। इस बारे में इस्लामाबाद में मुकीम हमारे नुमाइंदे असगर हयात ने मारूफ एंकर और सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
3: अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे तो इसकी कलील मदद में दाखिली और खारजी अमूर पर क्या असरात मरतब होंगे और तवील मदद में इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं?
4: आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान के लिए कोई पिछले 76 साल में कोई एक साल का पैच इतना गेम चेंजर नहीं रहा जो पाकिस्तान ने मई 2025 से मई 2026 के दरमियान अचीव किया। पाकिस्तान की तीन बड़ी अचीवमेंट्स रहीं। नंबर वन, हमने अपने से कई बड़ा मुल्क है इंडिया, ऑन पेपर्स दिफाई बजट ज़्यादा है, फौज ज़्यादा है, राफेल भी है, सब कुछ है। जंग हमने शुरू नहीं की, हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी, हमने जंग जीती, हमने एस्केलेशन लैडर कंट्रोल किया, हमने जंग को उस लेवल पे नहीं ले गए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। तो पाकिस्तान ने ये बता दिया कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग मुल्क तो हैं लेकिन हम एस्केलेशन लैडर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन, ईरान अमेरिका जंग तो वो थी, इससे दुनिया का एक शख्स आप मुझे बता दें जो इम्पैक्ट ना हुआ। तेल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, हर शख्स पे इसका फ़र्क पड़ा। तो पाकिस्तान ने वो जंग रुकवा दी है अब जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ली हुई थी। जो बड़े बड़े तगड़े मुल्क काम नहीं कर सकते थे वो पाकिस्तान की तरफ नजरें लगाए हुए बैठे हुए थे और रोज हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आती थी, हाँ जी की बढ़े। इसी तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने वो काम किया जो यूएन का था लेकिन हमने वो कर दिया। हमने पीस के लिए अपना रोल जो है वो प्ले किया, हमने पीस के लिए अपने एफर्ट्स किए। और इस सारे सिनेरियो को अगर हम ऑब्जर्व करें, हम एनालाइज करें तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर एक मकाम और मर्तबा बन गया। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अब ये जो पोजीशन है पाकिस्तान की, इसे पाकिस्तान को अपने अवाम की बेहतरी के लिए यूज़ करना होगा। डोमेस्टिक सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि उन चैलेंजेस से भी निबर्दाजमा होने के लिए पाकिस्तान जो है उसे इस अपनी यूनिक इंटरनेशनल पोजीशन को यूज़ करना चाहिए। तो पाकिस्तान ईरान के साथ सबसे पहले तो तेल लेना शुरू कर देगा जेन्युइन तरीके से, पहले स्मगल होता था उसे भी रोकने की कोशिश की गई। सेकेंडली, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, फौरी तौर पर ईरान के एंड से कम्प्लीट है, हम यहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं। ईरान के साथ बहुत बड़ी इकोनॉमिक डील्स साइन हो सकती हैं। फिर सेकेंडली, गल्फ में जो इस दफा हुआ है अरब स्टेट्स के साथ जो हुआ है, तो अब पूरी दुनिया को समझ लग गई है कि सिर्फ पोर्ट्स होना काफ़ी नहीं है, तगड़ा मुल्क भी होना चाहिए। तो अब गवादर एक अल्टरनेट के तौर पर उभर कर सामने आया है क्योंकि हमारे पोर्ट सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं प्रोवाइड करते, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, एक स्टेट जो इंडिया के मुकाबले में अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश कर चुका है। आप ये देखें इस पूरे तनाज़े में कौन सा एक मुल्क है जो आप नाए हुरमत से आसानी से गुजरता था, जिसे अमेरिका भी कुछ नहीं कहता, ईरान भी कुछ नहीं कहता, वरना जिसे अमेरिका जाने देता था ईरान उसको पकड़ लेता था, जिसे ईरान जाने देता था अमेरिका उसके ऊपर बॉम्ब मार देता था। समुंदर में पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर लॉन्च किया, हम अपनी सारी वेसल्स को एस्कॉर्ट करके लाते रहे। तो पाकिस्तान ने अनइमेजिनेबल काम किया और पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म तो ये फ़ायदा है कि हम फौरी तौर पर इसके फ़वाद हासिल कर सकते हैं गवादर, इसके अलावा ईरान के साथ डील्स, और अब पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है।
3: दूसरा सवाल इसी से मुतालिक है कि क्या इस सालिसी के नतीजे में आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी आवाम को कोई हकीकी मुआशी या समाजी फ़ायदा पहुँचेगा या ये ज़्यादातर सिर्फ एक सफारती और खारजी पॉलिसी की कामयाबी तसव्वुर की जाए?
4: देखिए, सफारती तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये, लेकिन इसके इकनॉमिक इम्पैक्ट होगा, जिस तरह से मैंने भी आपको अभी बताया कि इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है उसे बहुत से फ़वाद मिलेंगे। पाकिस्तान एक तो सऊदीया के साथ हमारा SMDA साइन हो गया, कतर इंटरेस्टेड है, टर्की इंटरेस्टेड है, इजिप्ट इंटरेस्टेड है, अरब जो है वो पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहे हैं। पोस्ट मार्का हद पाकिस्तान के JF-17 थंडर में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो डिफेंस एक्सपोर्ट से आप अपनी इकॉनमी बेहतर बना रहे हैं। इस जंग में अरब्स को समझ लग गई कि सिर्फ अमेरिका पे इंहसार नहीं कर सकते हम, अमेरिका के बेस होना सिक्योरिटी की जमानत नहीं है बल्कि उल्टा लाइबिलिटी है। तो टेक्निकल लेवल पे मैन पावर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो पाकिस्तानी जो पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तान को चला रहे हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो ईरान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हमें मिलेंगी और उसमें भी ऑब्वियसली उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो पाकिस्तानी होगा। अच्छा, तो इसके बहुत से फ़ायदे होने जा रहे हैं।
3: और इस किरदार का पाकिस्तान के अफगानिस्तान और भारत जैसे हमसाया ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते में इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर क्या असर पड़ सकते हैं? क्या मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ ताल्लुकात भी बहाल हो सकते हैं?
4: यूएई के साथ तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ही बड़े अच्छे रहे हैं और कोई उतार चढ़ाव छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं होते। हम रावलपिंडी में फ्यू आवर्स अगो वी हैड अ मीटिंग विद अ वेरी सीनियर सिक्योरिटी सोर्स, तो उन्होंने कहा कि यूएई के हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से अमरीका ने इंडो पैसिफिक रीजन को सिर्फ पैसिफिक रीजन डिक्लेयर कर दिया, क्वाड ख़त्म हो गया, इंडिया इररेलेवेंट होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं, पाकिस्तान उनसे फ़ायदा उठाएगा। और अफगानिस्तान वाले मामले पर भी पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं ले रहे और हमारे लोग मर रहे हैं तो हम प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स करके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद तबाह कर देते हैं। सो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो दुनिया को समझा सकता है कि दीज आर आर कंसर्न्स और हम ये अपना मसला हल कर रहे हैं।
3: फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मौजूदा हनीमून कितना पायदार है और क्या पाकिस्तान पोस्ट ट्रंप दौर के लिए भी तैयार है?
4: देखिए एग्जैक्टली अमेरिका जो है उसमें पोस्ट ट्रंप तो अभी सिनेरियो को अभी नहीं, आप उसी वक्त का सोच रहे होते हैं। अमेरिका में कुछ बदलते देर नहीं लगती, इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। पाकिस्तान ने टेक्निकली ट्रंप को फेवर नहीं दी, पाकिस्तान ने अमेरिका को फेवर दिया। इस जंग से अमेरिका बहादुर अगर निकल रहा है वो ऑफ रैंप पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है, तो ऐसी शख्सियत जो कि किसी को नहीं बख्शती। मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि वो यूँ लगता है कभी कभी कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पीआर मैनेजर हैं, उन्होंने तारीफ का ठेका उठाया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आज तक मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलावा किसी और शख्स की इतनी तारीफ नहीं की जो उनकी की है। और आई गेस के पाकिस्तान बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहा है, ये वाली यूनिक डिप्लोमेटिक पोजिशन इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि सबसे आप बना के चले और सबके लिए काबिल कबूल नहीं बल्कि सब आपकी इज्जत कर रहे हो, तो पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल से ये अचीव किया और यानी इमेजिनेबल था।
2: ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार रहा और अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, इस मौजू पर अभी आपने मारूफ पाकिस्तानी एंकर और सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन के ख्याल सुने जिनसे बातचीत कर रहे थे इस्लामाबाद में मुकीम हमारे नामा निगार असगर हयात।
1: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर।
0: और इसमें से बहुत से सेगमेंट ऐसे भी हमने आज के प्रोग्राम में भी शामिल किए और आइंदा भी शामिल करते हैं जिनकी वीडियोस भी हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे पर आप देख सकते हैं। अब प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ है, आपको ये याद दिला दें कि यही प्रोग्राम बुध की शाम को 6 बजे भी आप सुन सकेंगे SBS 2 पर और इसके अलावा जुमे का प्रोग्राम भी शाम को 6 बजे दोबारा नशर मुकर्रर होता है। यहीं पर अपने आज के मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ फिर मिलेंगे दर खुदा लाया, अल्लाह निगेबान।
5: SBS Punjabi on mobile, online and on radio.
6: Tusi SBS Punjabi naal mobile, online ate radio dwara jude ho.
7: जी आयन जी, SBS ते पंजाबी प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। अज आ जी दिन बुधवार जुलाई महीने की पहली तरीक, तो सिडनी तो मैं जसमीत कौर लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना SBS पंजाबी प्रोग्राम। सारे सुन रहे स्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते हैलो जी, की हाल चाल आ। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असी उन्हां सारे परंपरागत मालकां नू माण देना चाहुंदे आ जिन्हां दी धरती तो असी अज दा इह प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हां। पंजाबी प्रोग्राम कामा रायगल लोकां ते उन्हां दे बजुर्गां दीआं मौजूदा ते पिछलियां पुश्तां नू सत्कार दिंदा है। असी उन्हां सारे रवायती मालकां अते आदिवासी ते टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर खित्तियां नू वी सत्कार पेश करदे हां जिथों तुसीं साडा अज दा इह प्रोग्राम सुन रहे हो। प्यारे दोस्तों, एक नवां दिन, नवां महीना ते एक नवां SBS पंजाबी प्रोग्राम लैके हाजर हाँ जी मैं। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ SBS ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਜੈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਰਥਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਿਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਨਿਊ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2026। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ SMS ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 0443-799-767-0439-799-767। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
8: ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਹਨ।
7: ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੁਣਾਂਗੇ।
9: ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਆ, ਇਹ ਫੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ।
7: ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ।
10: ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
7: ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

0: दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 दे 19वें दिन जर्मनी अते नीदरलैंड नूं रोमांचक पेनल्टी शूटआउट विच हार दा सामना करना पिया है। उत्थे ही ब्राज़ील ने इंजरी टाइम विच गोल करके जापान नूं हराउंदिआं आखिरी 16 विच अपनी जगह पक्की कर ली है। तुसीं सुन रहे हो SBS पंजाबी ते मैं हाँ MP सिंह। फीफा विश्व कप 2026 दे 19वें दिन नॉकआउट पड़ा दे 3 मुकाबलियां दे बेहद रोमांचक पलां दा सार लैके चार बार दी चैंपियन जर्मनी अते साबका फाइनलिस्ट नीदरलैंड पेनल्टी शूटआउट विच हार के टूरनामेंट तो बाहर हो गए हैं, जबकि ब्राज़ील ने आखिरी पलों में जित हासिल करके अगले दौर विच थां बना ली है। 5 बार दी विश्व चैंपियन ब्राज़ील ने जापान नूं 2-1 नाल हराया। जापान ने बेशक शुरुआती बढ़त हासिल कर ली सी जदों कायशू सानो ने ब्राज़ील दी रक्षा पंक्ति दा गलती दा फायदा चुकदिआं अपने अंतरराष्ट्रीय करियर दा पहला गोल दागिआ, ते इस दे जवाब विच ब्राज़ील वलों 56वें मिंट विच कासिओ मीरो दी मदद दे नाल बराबरी दा गोल कीता गया। फिर इंजरी टाइम दे आखिरी पलां विच गैब्रियल मार्टिनेली ने जेतू गोल करके अपनी टीम नूं आखिरी 16 विच पहुँचा दिता। हुण ब्राज़ील दा सामना कोट डिवार अते नार्वे विचाले होण वाले मुकाबले दे जेतू नाल होवेगा। इस दे नाल ही 4 वार दी चैंपियन जर्मनी नूं पैराग्वाए ने टूर्नामेंट दे पहले पेनल्टी शूटआउट विच 4-3 नाल हरा के वड्डा उल्टफेर कर दिता। पहले हाफ दे अंत विच जूलियो एनसीसो दे हैडर नाल पैराग्वाए ने चढ़त बढ़ाई, पर दूजे हाफ दी शुरुआत विच जर्मनी ने स्कोर बराबर कर दिता। वादू समय विच जर्मनी दा एक गोल वीडियो असिस्टेंट रैफरी VAR वलों रद्द कर दिता गया। इस तो बाद पेनल्टी शूटआउट विच पैराग्वाए ने दबा हेठ शानदार प्रदर्शन करदिआं जित दर्ज कीती अते हुण उस दा सामना फ्रांस अते स्वीडन दे जेतू नाल होवेगा। एक होर दिलचस्प मुकाबले विच मोरोको ने नीदरलैंड नूं पेनल्टी शूटआउट विच 3-2 दे नाल हरा दिता है। नीदरलैंड लई कोडी गापको ने दूजे हाफ दे अंत विच गोल करके टीम नूं बढ़त दिवाई। कुछ दिन पहलां ही उन्हां ने खुलासा कीता सी कि उन्हां अते उन्हां दी जीवन साथी ने अपने अणजम्मे बच्चे नूं गुआ दिता है, पर इंजरी टाइम विच मोरोको ने बराबरी दा गोल करके मैच नूं वाधू समय विच पहुँचा दिता। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट विच मोरोको ने बाजी मार ली अते हुण ओह आखिरी 16 विच कैनेडा दे नाल भिड़ेगा। इसे दौरान ऑस्ट्रेलिया दी टीम सॉकरूज़ आखिरी 16 विच थां बनाउण लई मिस्र नाल मुकाबले दी तैयारी कर रही है। खिडारी क्रिश्चियन वोलपाटो दा कहना है कि इटली दी बजाए ऑस्ट्रेलिया लई खेडण दे अपने फैसले उत्ते होई आलोचना ने उन्हां नूं होर मजबूत बना दिता है।
1: You know, I say everything, but you know, sometimes there's going to be stuff said about you. There's going to be good things, there's going to be bad things, but I feel like as a footballer, you just got to be resilient and, you know, and sometimes you can use it as fuel as well, and I like to use that as well.
0: Yaad rahe, Socceroos da Misr naal eh mukabla shaniwar svere 3 vaje Australian time de anusar SBS ate SBS on demand utte sidha prasarit kita javega. Is match da jetu Argentina ate Cabo Verde vichale hon wale mukable de jetu naal khedega. 20वें दिन कोट डिवार अते नार्वे पहली बार विश्व कप विच आमणे सामणे होणगे अते जेतू आखिरी 16 विच पहुँचेगा। इस तों इलावा लगभग एक सदी बाद फ्रांस अते स्वीडन विश्व कप विच एक दूजे दे सामणे होणगे। सह मेज़बान मैक्सीको अपनी धरती उत्ते मैक्सीको सिटी विच इक्वाडोर नाल खेडेगा। दोस्तों, ए सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 19वें दिन दीआं खेडां दा सार। जुड़े रहो SBS पंजाबी दे नाल, हर रोज़ असी तुहाडे वास्ते लैके आवांगे फीफा वर्ल्ड कप दे रोमांचक पल। मैनू MP सिंह नूं दिओ इजाजत, सुनदे रहो SBS पंजाबी।

0: rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS रेडियो ऐप नूं आज ही डाउनलोड करो ते अपने पसंदीदा प्रोग्रामां दा आनंद माणो। इस नूं ऐप स्टोर जां गूगल प्ले तों मुफ्त प्राप्त करो।
3: दोस्तों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। अज आ बुधवार ते तुसी सुन रहे हो SBS पंजाबी प्रोग्राम सिडनी तो जसमीत कौर दे नाल। दोस्तों इस हफ्ते काफ़ी कुछ नवा आया जी पॉप कल्चर दे विच, चाहे वह पंजाबी गीत होण या फिर पंजाबी फिल्मां होण। मैं इस हफ्ते नवा गाना सुनिया सी अमरिंदर गिल दा गीत कॉफी, ते जेकर अज दे प्रोग्राम दे विच समा होया ते तुहानू भी जरूर सुनाऊंगी। ते गीत संगीत ते फिल्मी दुनिया दे विच होर कुछ भी बहुत नवा हो रहा है, की कुछ नवा हो रहा आओ जानदे आ हरप्रीत कौर दे नाल अज दी बॉलीवुड गपशप विच।
4: SBS रेडियो पंजाबी दे प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर, खबरां दी शुरुआत करदे हां। सिनेमाघरां विच पंजाबी सिनेमा दी मोस्ट अवेटेड फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 दर्शकां दे दरमियान आ गई है। फिल्म दी रिलीज तो पहला मुंबई विच इस दी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जो कैरी ऑन जट्टा 4 दा हिस्सा भी है, उना दे नाल उना दे पति एक्टर अते निर्माता रवि दुबे भी मौजूद रहे। शहनाज गिल ने अपने स्टाइलिश लुक तो एक बार फिर सारेयां दा दिल जीत लिया। ओ छेती ही गिप्पी गरेवाल दे नाल एक फिल्म विच नजर आउण वाली है। फिल्म दे मुख कलाकार गिप्पी गरेवाल हमेशा दी तरह बेहद ही डैशिंग नजर आए। उथे पंजाबी सिनेमा दे फेमस एक्टर बिन्नू ढिल्लो ने रवायती अंदाज विच कुर्ता पजामा पाया होया सी। निधि दत्ता ने फिल्म बॉर्डर 3 दा ऑफिशियली ऐलान कर दिता है। इस फिल्म विच वीर चक्र नाल सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह दी कहानी विखाई जाएगी। ओ भारतीय फौज विच एक सीनियर जनरल ऑफिसर सन। उन्हां ने 1965 दे भारत पाकिस्तान जंग दे दौरान अहम भूमिका निभाई सी। तुहानू दस दिए कि हरबख्श सिंह नू पंजाब दा रक्षक मनिया जांदा है। हुण लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह दी लाइफ नू पर्दे ते विखाया जाएगा। ए फिल्म बॉर्डर दी तीजी किश्त होएगी। सनी देओल तीजी वार भी इस फिल्म दा बनेंगे अते दर्शकां दा दिल जीतणगे। हालांकि फिल्म विच कौन लीड किरदार निभाएगा ए हले कन्फर्म नहीं होया है अते इस दा पता समय दे नाल ही लगेगा। वेलकम टू द जंगल दे मेकर्स ने फिल्म दा नवा गाना तेरा पैसा मेरा पैसा रिलीज कर दिता है। इस खास गाने विच अक्षय कुमार ने सिर्फ स्क्रीन ते ही नहीं बल्कि अपनी आवाज भी दिती है। उना दे नाल फरहाद भिवंडी वाला, रुबाई अते संगीतकार विक्रम मोंट्रोस ने भी गाने नू अपनी आवाज दिती है।
5: मेरे पैसे को जो देखे पीट दूं मैं उसको लेके, कर लो चाहे जादू टोने मुझसे ना ये पैसे छूटे।
4: सिनेमाघरां विच मच अवेटेड पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 रिलीज हुई है। कैरी ऑन जट्टा पंजाबी इंडस्ट्री दी सब तो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी विचों एक रही है। गिप्पी गरेवाल इस फ्रेंचाइजी दा चेहरा रहे ने। कैरी ऑन जट्टा 4 इस साल दी सब तो ज्यादा इंतजार किते जाण वाली फिल्मां विचों एक है। कैरी ऑन जट्टा 4 विच सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लो, करमजीत अनमोल, गुरप्रीत कुगी, प्रिंस कवलजीत सिंह अते पुखराज भल्ला वर्गे कलाकार ने। ए मरहूम एक्टर जसविंदर भल्ला दी आखिरी फिल्म है। दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो अलावा पंजाबी फिल्मां विच भी अदाकारी कीती है। पंजाबी फिल्मां तो अलावा वह हिंदी फिल्मां विच भी अहम किरदार निभा चुके ने। उन्हां दी एक नवी पंजाबी फिल्म रन्ना विच तन्ना दी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। फिल्म रन्ना विच तन्ना दे मेकर्स ने फिल्म दा एक पोस्टर शेयर किया है। AI नाल बने इस पोस्टर विच दिलजीत डॉक्टर बने नजर आ रहे ने। उन्हां दे चारे पासे नर्स नजर आ रही ने। दिलजीत दियां अखां ते हार्ट इमोजी बने ने। इस नाल अंदाजा लाया जा रहा है कि फिल्म रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है। फिल्म विच दिलजीत दोसांझ लीड रोल विच नजर आउणगे। फिल्म रन्ना विच तन्ना नू अमरजीत सिंह सरोन निर्देशित कर रहे ने। इस फिल्म दे प्रोड्यूसर पवन गिल, अमन गिल अते धर्मेंद्र सिंह ने। फिल्म दी रिलीज डेट 25 जून 2027 है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल दा नवा गाना ओ मेरे बलम आखिरकार रिलीज कर दिता गया है। ओ मेरे बलम दी सुरीली धुन ने भी लोकां नू प्रभावित किता है। एक रोमांटिक अते सॉफ्ट ट्रैक है

फिल्म जगत विच एनी दिनी सच्ची अते इमोशनल कहानियां नू वड्डे पर्दे ते उतारन दा चलन तेजी नाल वध्या है। इस कड़ी विच निर्माता विजय कुमार अपनी आने वाली फिल्म डीजीपी कश्मीर नू लेके पूरी तरह तैयार ने। इस फिल्म दी शूटिंग कश्मीर दीयां खूबसूरत अते बर्फीली वादियां विच शुरू होने जा रही है। फिल्म विच डेजी शाह, अश्मित पटेल, शारिब हाशमी, सारा खान, मीर सरवर, गैवी चहल अते पुनीत इसर वर्गे मंझवे कलाकार मुख भूमिकावां विच नजर आउण वाले ने। निर्माता विजय कुमार ने कहा है, असी फौज अते सुरक्षा बलां दे बहादुरी दे कई किस्से सुने ने, लेकिन कश्मीरी पुलिस दे उन्हां स्थानक जवानां दे योगदान नूं वी उन्ना ही सम्मान मिलना चाहीदा है, जिन्हां ने देश अते नागरिकां दी हिफाजत दे लई अपनी जान दांव ते लगा दित्ती। इह फिल्म उन्हां अनकहे हीरोज नूं साडे वल्लों इक सच्ची श्रद्धांजलि है। A.R. रहमान अक्सर अपने संगीत दे नाल दर्शकां नूं हैरान करदे ने। उन्हां दे संगीत नूं मुल्की नहीं विदेशां विच भी खूब पसंद कीता जांदा है। एही वजह है कि उन्हां नूं ऑस्कर मिलिया है। म्यूजिक कंपोजर नूं हुण इक होर वड्डी उपलब्धि मिली है। उन्हां नूं अमेरिका दे वाशिंगटन विच इक समारोह विच अकैडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दे नाल सम्मानित कीता गया है। रहमान ने एक्स ते इक पोस्ट ते मशहूर फिल्म मेकर पीटर जैक्सन को मिले गोल्ड प्लेट अवार्ड दी तस्वीरां शेयर कीतियां ने। बॉलीवुड दे कई अजिहे गाने ने जो लोकां दे दिलां विच खास थां बना लैंदे ने। अजिहा इक गाना है फिल्म चाइना गेट दा मशहूर डांस नंबर छम्मा छम्मा। उर्मिला ने दस्सिया कि ओ इस गाने नूं करन दे लई शुरुआत विच बिल्कुल भी तैयार नहीं सी, क्योंकि उस वेले इंडस्ट्री विच आइटम नंबर नूं लैके इक वखरी सोच सी, जिस दे चलदियां बाद विच निर्देशक राजकुमार संतोषी ने मेरे नाल गल कीती अते मेरा नजरिया बदल दिता। उन्हां ने समझाया कि पहला भी इक अजिहा गाना बनाया गया सी जिस नूं लोग डांस करदे हमेशा याद करते ने। अजय देवगन ने अपने पिता अते एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन दी बरसी दे मौके ते अपनी नवी फिल्म चौहान दा ऐलान कीता है। इस दे नाल ही मेकर्स ने चौहान दी पहली झलक भी सांझा कीती है, जिस विच अजय देवगन 57 साला दी उम्र विच एक बार फिर फुल ऑन एक्शन अवतार विच नजर आ रहे ने अते चौहान दा किरदार निभा रहे ने। टीजर दी शुरुआत 2018 दे कश्मीर दे पुलवामा तो हुंदी है, जिथे पत्थरबाज फौज ते पत्थरबाजी कर रहे ने अते फौज उन्हां दा मुकाबला कर रही है। चौहान अगले साल यानी 2027 विच 1 अक्टूबर नूं सिनेमाघरां विच दस्तक देवेगी। साउथ दे दिग्गज कलाकार रजनीकांत दी अपकमिंग फिल्म जेलर 2 नूं लैके फैंस दे दरमियान उत्साह वधदा जा रहा है। खबरां दे मुताबिक बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने रजनीकांत दी इस फिल्म विच अपने खास कैमियो रोल दी शूटिंग पूरी कर ली है। दस्सिया जा रहा है कि एक्टर ने चेन्नई विच 2 दिन दी शूटिंग शेड्यूल विच अपना हिस्सा पूरा कीता है। नेल्सन दिलीप कुमार ने जेलर 2 विच ऋतिक रोशन दे लई एक बेहद ही शानदार किरदार तैयार कीता है। उन्हां दा कैमियो फिल्म दे एक अहम मोड़ ते आउंदा है अते कहानी नूं अग्गे वधाउण विच वड्डी भूमिका निभाउंदा है। बॉलीवुड दे 80 अते 90 दे दहाकियां दी फेमस अदाकारा नीलम कोठारी ने पुराने दिनां नूं याद करदे होया फिल्म इंडस्ट्री दे उस दौर नूं बेहद खास दस्सिया। उन्हां ने कहा, 80 अते 90 दे दहाकियां विच फिल्म सेट ते एयर कंडीशनर, वैनिटी वैन वर्गियां सहूलतां नहीं होया करदियां सन। मेकअप रूम विच 1 घंटे मेकअप अते 1 घंटे हेयर स्टाइल बनाउण विच लगदे सन, लेकिन सेट ते पहुंचदे सब विगड़ जांदा सी। नीलम कोठारी ने कहा है, जेकर मैनूं पुछिया जाए कि अज दे सेट अते 80 90 ਦੇ ਧਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗੀ। नीलम कोठारी ने अपने सब तो फेमस गाने आपके आ जाने से दा भी जिक्र किया है। 1987 विच रिलीज हुई फिल्म खुदगर्ज दा एक गाना सी। गोविंदा ते नीलम ते फिल्माया गया ए जोशीला डांस नंबर उस दौर दे सब तो यादगार गाने विच शामिल हो गया अते अज भी लोकां दी पसंद बनया होया है।

0: बॉलीवुड गपशप विच आज जन्ना ही अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे और बॉलीवुड दिया ताजा खबरां लेके। तद तक लई इजाजत।
1: प्यारे दोस्तों, अज दे SBS पंजाबी प्रोग्राम नू समेटन दा समां लग गया आ रहा जी, पर कुछ होर सुनेहे आए हुए आ जो मैं तुहानू पढ़ के सुनाऊंगी। ए भेजिया जी, पहला सुनेहा इकबाल सिंह जी अते जसवीर कौर जी ने सिडनी तो ही, ते कह रहे जसमीत कौर तुहाडे वल्लों पेश कीता जांदा ए प्रोग्राम बहुत रोचक ते जानकारी भरपूर हुंदा है। MP सिंह जी वल्लों फीफा वर्ल्ड कप अते सेहत बारे जानकारी बहुत चंगी लगी। बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी ते जसवीर कौर जी कि तुसीं सानू लाइव सुन रहे हो ते प्रोग्राम दा आनंद भी माण रहे हो। ते इस दे नाल ही सिडनी तो ही परमजीत कौर जी ने सुनेहा भेजिया, वह कह रहे सत श्री अकाल जसमीत कौर, अज का प्रोग्राम बहुत वधिया, कोलेस्ट्रोल की जानकारी देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया परमजीत जी, उम्मीद है तुहानूं अज का प्रोग्राम लाभदायक लग्या होगा। तो जेकर दोबारा सुनना चाहो तो रात को 9 बजे मुड़ प्रसारण होगा SBS 2 उत्ते, तुसीं उत्थे भी सुन सकते हो। तो बॉलीवुड गपशप तो पहला मैं तो जिक्र किया कि अमरिंदर गिल का इस हफ्ते एक नवा गीत आया जी, गीत का नाम आ कॉफी। तो अमरिंदर गिल के प्रशंसकों को काफ़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ सुनाई दी है, आओ सुन दिया गीत कॉफी।

प्यारे दोस्तों, अज दा प्रोग्राम जेकर तुसी लाइव सुनिया तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। हसदे रहो, मुस्कुराते रहो ते अपनी प्रतिक्रिया जरूर साडे तक पहुँचाते रहो। मैनू जसमीत कौर नूं दिओ इजाजत, फिर मिलांगी अगले SBS पंजाबी दे प्रोग्राम दे विच। तुसी सुनो अज दे प्रोग्राम दा अखीरला गीत, जिसनों गाया जी निर्वैर पन्नू ने। गीत दा नाम है जी रांझा।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक नई शाम, एक नया दिन और एक नया शो. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राज के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. मैं हूं नबील और आज के शो की शुरुआत करते हैं. सबसे पहली जो हमारी रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में आपको बता दूं. एक बड़ा अपडेट है. कई हफ्तों की बहस और बदलावों के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स वाला बिल अब कानून बन चुका है. इस बिल में क्या बदलाव हुए हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है आपकी जेब पर, इस पर डिटेल में बात होगी. इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है. उसके बाद आप के लिए लेकर आएंगे इंडिया रिपोर्ट जिसमें होती हैं भारत की कुछ खास खबरें और फिर हम सुनेंगे मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स की प्रेरणादायक कहानियां जो संघर्ष से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी और बदलाव की यात्रा दिखाती हैं. इस बातचीत में पहले हम जुड़ेंगे लेखक दिवेश सरीन और सन्यासी अर्जुन सखादास से और फिर आगे जतिन कोटेचा से भी बात होगी जो खुद को एक डेलिबरेट एडवेंचरर बताते हैं और अपनी अनोखी यात्रा के अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे. और ये रिपोर्ट आपके लिए दो भाग में हम प्रस्तुत करेंगे और जाहिर सी बात है इसके बीच बीच हम आपके लिए गाने भी प्ले करते रहेंगे. और हमारा फ़ोन नंबर 04397997667 है. अगर आप कोई भी संदेश भेजना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिए और हम इसको ऑन एयर पढ़ेंगे. 04397997667. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी, गाने भी आएंगे. शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज़ फ्लैश. बुधवार 1 जुलाई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा के निर्देशों के तहत ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर, पासपोर्ट और वीज़ा यानी CPV सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान एप्लीकेंट्स की मदद के लिए VFS ग्लोबल ने कस्टमर सपोर्ट की जानकारी जारी की है. आप 03-9956-3830 पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार तक कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जबकि ईमेल इंक्वायरीज info.ind_aus@vfshelpline.com पर भेजी जा सकती हैं. एमरजेंसी कॉन्सुलर असिस्टेंस के लिए एप्लीकेंट्स को हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा की ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है. जो पासपोर्ट्स कलेक्शन के लिए रेडी हैं उन्हें पहले की तरह ही प्रोसेस के अनुसार जारी किया जाएगा, जबकि जिन एप्लीकेशंस पर काम चल रहा है वो सर्विसेज बहाल होने तक पेंडिंग रहेंगे. कॉलिशन MPs ने चेतावनी दी है कि जिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने लेबर की 5% डिपॉजिट स्कीम के तहत घर खरीदे हैं उनके मॉर्गेजेस जल्द ही उनके घरों की कीमत से ज्यादा हो सकते हैं. कोटैलिटी, जिसे पहले कोर लॉजिक के नाम से जाना जाता था, उसकी एक नई रिपोर्ट के अनुसार जून में देश भर में घरों की वैल्यूज 0.4% गिर गई है, जो दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स, इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स पॉलिसी में नए बदलाव इस गिरावट के मुख्य कारण हैं. शैडो असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बेन स्मॉल ने कहा है कि एल्बनीजी सरकार द्वारा माइग्रेशन लेवल्स को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आज यानी 1 जुलाई से जन्मे या फिर गोद लिए गए बच्चों के माता पिता अब सरकारी पेड पेरेंटल लीव के तहत 6 महीने की छुट्टी के लिए पात्र होंगे. ये योजना पहले 24 हफ्तों की थी जिसे बढ़ाकर 26 हफ्ते यानी लगभग 6 महीने कर दिया गया है. ये बदलाव एल्बनीजी सरकार की फेज्ड एक्सपेंशन का अंतिम चरण है जिसके तहत पेड पेरेंटल लीव को 2023 में 20 हफ्ते, 2024 में 22 हफ्ते, पिछले वर्ष 24 हफ्ते और अब 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है. जो माता पिता इसके लिए पात्र हैं, उन्हें छुट्टी के दौरान नेशनल मिनिमम वेज के बराबर पेमेंट मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य परिवारों को बच्चे के पहले साल में अधिक समय साथ देना और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना है। इसके अलावा आज से मिनिमम वेज भी बढ़ाकर $26.44 प्रति घंटा कर दिया गया है, जो 38 घंटे के वर्किंग वीक के आधार पर टैक्स से पहले $1,004.90 प्रति सप्ताह के बराबर है। ग्रीन्स पार्टी फेडरल सरकार की सोशल मीडिया लॉज को और एक्सपैंड करने की मांग कर रही है, ताकि सोशल मीडिया कंपनीज के एल्गोरिथम्स को भी इसके दायरे में लाया जा सके। ग्रीन सेनेटर सारा हैंसन यंग का कहना है कि मौजूदा कानून, जिनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना अकाउंट रखने से रोका गया है, बच्चों और टीनेजर्स की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। अल्बनीजी सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपने वर्ल्ड फर्स्ट सोशल मीडिया लॉस को और सख्त कर सकती है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि कई अंडर एज यूजर्स इन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर रहे हैं। सारा हैंसन यंग का कहना है कि प्रस्तावित उपाय, जिनमें नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना बढ़ाना भी शामिल है, इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वेनेजुएला में आए ट्विन अर्थक्वेक से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 1,943 हो गया है, जबकि लागुएरा में करीब 10,000 लोग अभी भी लापता हैं। लागुएरा के दो कस्बों में भूकंप के समय लगभग 30,000 लोगों के मौजूद होने का अनुमान था, जिनमें से करीब 10,000 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। भूकंप आए लगभग एक हफ्ते बीत जाने के बाद मलबे में दबे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब खबर भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली में सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत दिल्ली में अगले कुछ वर्षों में हजारों चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की तैयारी है और 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इंसेंटिव दिए जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ डिलीवरी व्हीकल्स को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली में कम से कम 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नबील और अब आगे बढ़ते हैं और अपने शो की पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कई हफ्तों की बहस और बदलावों के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग समेत टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलावों वाला बिल अब कानून बन गया है। इस बिल में क्या क्या है और कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है, इसी पर विस्तार से एक रिपोर्ट लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा।
3: आप सुन रहे हैं
2: मनी मैटर्स।
3: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
4: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। लंबे समय से चर्चा में और खबरों में छाया हुआ टैक्स रिफॉर्म बिल 25 जून को संसद में पास हो गया, जिसने मई के बजट में हुई कई बड़ी घोषणाओं को अब कानून बना दिया है। यह बिल सरकार और ग्रीन्स के बीच एक समझौते के बाद पास हुआ। इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स, नेगेटिव गेयरिंग और इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव शामिल हैं और इनका असर खास तौर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। आज हम समझेंगे कि इस बिल में क्या क्या है और आपके लिए इसका क्या मतलब है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हैं नितिन सैभी, जो टैक्स सर्जन के नाम से मशहूर हैं और 15 साल से अधिक समय तक ATO में टैक्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर।
5: नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को।
4: सबसे पहले बात कैपिटल गेन्स टैक्स की यानी CGT की। अगर अभी आप जैसे कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं और एक साल से ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं, तो मुनाफे पर आपको 50% की CGT डिस्काउंट मिलती थी। तो नए कानून के तहत 1 जुलाई 2027 से क्या बदल रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए इस बदलाव का असल में मतलब क्या है?
5: आई थिंक ये काफी सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म हुआ जी। और इसमें क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स डिस्काउंट जो है 1 जुलाई 2027 से 50% जो आपका CGT डिस्काउंट है वो फिनिश हो गया और उसके रिप्लेसमेंट में इन्होंने रूल पास किया है कि कॉस्ट बेस्ड इंडेक्सेशन आप अप्लाई करोगे फ्रॉम 1st जुलाई 2027। और उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि 1st of July 2027 से आपके कोई भी नेट कैपिटल गेन्स होंगे उस पे आपको 30% मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। और ये सिर्फ नेट कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड नहीं है, चाहे आपके शेयर्स हैं, चाहे आपके ईएफटीज हैं, चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी है, तो ये सारों पे इम्पैक्ट हुआ है। और ये किन किन पे लोगों पे इम्पैक्ट होगा, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में हो जाए या प्रॉपर्टी में हो जाए, ट्रस्ट भी हैं, पार्टनरशिप्स भी हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं, और इवन कंपनीज एंड सुपर फंड्स भी इस ट्रीटमेंट में आ गए। और सबसे पहली बार ये हुआ है जो श्रोताओं को आई थिंक सरप्राइज लगेगा कि अगर आपने प्री 1985 से पहले अगर आपने कोई भी एसेट लिया हुआ है, अब पहले होता था कि प्री 1985 से पहले जब आपने एसेट लिया है तो अगर आप एसेट बेचते थे तो आपको टैक्स फ्री होता था, उस पे कोई भी सीजीटी नहीं लगता था, इवन 50% भी। अब इन्होंने क्या बोला है कि वो सारे एसेट जो अगर आपने रखे हुए हैं प्री 1985 उन पे भी अगर आप 1 जुलाई के बाद सेल करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा।
4: जी, तो मैं बात एक और ऐसे ही अहम टॉपिक की जो इस रिफॉर्म बिल्स में रहा है उसकी करना चाहूंगी, नेगेटिव कैरिंग। नेगेटिव कैरिंग श्रोताओं के लिए बता दें कि वो स्थिति है जब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर होने वाला खर्च उससे मिलने वाला किराए या उससे मिलने वाली आमदनी से ज़्यादा होता है तो उस घाटे को आप अपनी सैलरी जैसे दूसरी आमदनी से घटाकर कम टैक्स दे सकते हैं। तो नितिन, अगर आप इसमें हुए बदलावों को आसान भाषा में समझा सकें कि जो लोग मौजूदा प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा, उनके लिए ये कितना मायने रखता है?
5: तो आई थिंक ये बदलाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। जो मैं बोलूं हाई इनकम अर्नर्स थे, जो आपके एम्प्लॉयज थे, जो काफी जैसे मेडिकल प्रोफेशन है जहाँ जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा होती थी या 1.5 लाख से ज्यादा भी होती थी, तो वो कोशिश करते थे कि हम अपने इनकम टैक्स को कम कर पाए एक प्रॉपर्टी लेके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके, जिससे कि नेगेटिव गेयरिंग हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी कैश फ्लो लॉस पे है तो आप ऑफसेट कर सकते हो अपनी बाकी इनकम से, जिससे आपका बेसिकली उनका मेन ये होता था इंसेंटिव कि भाई फ्यूचर में हमें कैपिटल ग्रोथ मिलेगी इस प्रॉपर्टी को बेच के, और साथ साथ में हमारा इनकम टैक्स भी कम होता जाएगा। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई नेगेटिव गियरिंग जो आपकी है एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज पे वो आप नहीं ले सकते, सिर्फ आप ले सकते हो एक नई प्रॉपर्टी को। अब न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, वो मैं अभी डिटेल में टेक्निकली नहीं जाऊंगा, पर कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने ऑफ प्लान कोई चीज ली है या नया घर लिया है उस पर नेगेटिव गियरिंग ठीक है आपको मिलेगी, अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया है उस पे नेगेटिव गियरिंग उन्होंने बंद कर दी है।
4: तो ये तो हुई प्रॉपर्टी ओनर्स और इन्वेस्टर्स की बात, अब कुछ राहत की बात उनके लिए जो नौकरी करते हैं। इस बिल में 2 चीजें तय हुई हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नितिन उनके लिए ये दोनों रिलीफ्स किस तरह उन पर अप्लाई होंगी और उन्हें कब कैसे कहाँ मिलेंगी ये रिलीफ्स?
5: सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो $1,000 हमारा वर्क रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उन्होंने बोल दिया कि आप क्लेम कर सकते हो स्टैंडर्ड विदाउट स्टैंडर्ड वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ $1,000 विदाउट रिसीट्स के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहले सिर्फ $300 होता था, तो जैसे आपने वर्क रिलेटेड कुछ लेट्स से $900 का आपने वर्क रिलेटेड लैपटॉप ले लिया है तो आप लैपटॉप को पूरा क्लेम कर सकते हो एक ही बारी में, और उसके लिए आपको रिसीट्स की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं बोलूंगा अपने श्रोताओं को, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑडिट कभी भी एटीओ से आ सकता है, किसी रीजन के कारण भी आ सकता है, वो आपको फिर भी पूछ सकते हैं कि आपने ये $1,000 या $900 कहाँ पे खर्चा, क्यों खर्चा, बताए मुझे। चाहे वो आप लॉग बुक रखें, चाहे आप रिसीट रखें ना रखें, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसके रीजंस रखें। दूसरा इसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक इन्होंने नया ऑफसेट, टैक्स ऑफसेट इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जो कि है वर्किंग ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफसेट, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर आप वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब एज ए एम्प्लॉई हो आप, आपको $250 आपको अपने आपके टैक्स रिटर्न जो कि होगी 1st जुलाई 2027 से शुरू होगी, तो मतलब ये जो टैक्स ऑफसेट है ये आपको मिलेगा आपके 30 जून 2028 के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2027-2028 इनकम ईयर पे लागू होता है और ये टैक्स ऑफसेट है $250, ना कि टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन क्या होता है, वो आपकी इनकम को कम करता है। जो टैक्स ऑफसेट होता है वो आपके टैक्स को कम करता है। तो लेट्स से अगर आपका टैक्स बिल हुआ है $1,000, तो उसमें से $1,000 में से $250 आपको सीधा टैक्स बिल से कम हो जाएगा, $750 देना पड़ेगा।
4: जी नितिन, इन अहम बदलावों को आसान भाषा में समझने में हमारी मदद करने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए ये जानकारी लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
5: स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड सब श्रोताओं को नमस्कार।
4: और सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात कि ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है, इसे निजी फाइनेंशियल सलाह ना समझें। अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
3: SBS हिंदी की श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
3: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS On Demand पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS On Demand ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS On Demand पर।
11: Unscripted, untamed, unforgettable.
12: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
11: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
13: It's a whole new frontier.
14: Oh my God!
11: The absolutely real.
15: Cold like this can kill you.
11: Reality series.
16: It's on like Donkey Kong.
11: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
2: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको कोई भी SBS हिंदी का ऑडियो कार्यक्रम पसंद आता है और आप उस पॉडकास्ट को एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो और लाइक करें। SBSHINDI के नाम से आपको मिल जाएगा, जहां ना सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट बल्कि कम्युनिटी इवेंट्स और बहुत सारा वीडियो कॉन्टेंट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त अब समय हो गया है इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें होती हैं भारत की कुछ खास खबरें।
17: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। SIT जांच में हो रहे खुलासे को सार्वजनिक किए जाने की मांग विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर भाजपा और RSS को विपक्ष घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने SIT रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा,
18: SIT की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करें, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी FIR हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो।
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुप्रिया सुनीत कहती हैं,
18: देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि SIT जो बाबुओं से बनी है और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है।
17: चढ़ावा गड़बड़ी मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके लिए वह दबाव बनाने के तमाम प्रयास भी कर रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय समेत कुछ नेताओं ने अयोध्या कूच करने की कोशिश की। प्रशासन ने उन्हें राम मंदिर आने से रोक दिया। हालांकि रात में अजय राय को पुलिस के निरीक्षण में राम मंदिर का दर्शन कराया गया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राम प्रेम का तंज कसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा,
13: आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुआई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
17: राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं,
13: अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है, सही कौन है और बुरा कौन है।
17: भाजपा इस पूरे मामले पर बचाव की बजाय विपक्ष पर ही हमलावर है। इसके अलावा निष्पक्ष जांच की बात भी वह बार बार दोहरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना दौरे पर मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर विपक्ष पर बाधा खड़ी करने का आरोप लगा रही है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सरकार की पीठ थपथपाई है। मंगलवार को गुजरात में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम होने का दावा किया।
14: और एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी दुनिया के दूसरों से वह आयात करता था, इंपोर्ट करता था, लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की सफलता और प्राइवेट सेक्टर की इसमें बढ़ती हुई भागीदारी और स्टार्टअप की नई ऊर्जा ने मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम भी भारत में तैयार किया है।
17: आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह कहते हैं,
14: आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत अभियान के तहत हम एरोस्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किए गए प्रोविजंस का उद्देश्य डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाना है।
17: भारत और जापान अपनी आपसी साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे की शुरुआत कर रही हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर कल बातचीत होनी है। सोल में भारत जापान शिखर वार्ता के बाद दोनों नेता कुछ अहम घोषणा भी कर सकते हैं। इसमें रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने वाली घोषणाएं शामिल होंगी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: SBS हिंदी पर वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं नबील और अब एक छोटा सा एड ब्रेक लेंगे। एड ब्रेक से वापस आकर शुरू होगा गानों का सिलसिला, तो गाना प्ले करेंगे और कुछ रिपोर्ट जो बची हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहिए SBS हिंदी पर।
19: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
20: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
21: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
21: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
22: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया गाने का। लेकिन गाना शुरू करने से पहले आज के शो का सवाल पूछ लेते हैं और सवाल ये है कि बॉलीवुड में सीक्वल्स और रीमेक की तो बड़ी ट्रेंड है और काफ़ी मूवीज़ आती हैं जिनके सीक्वल होते हैं, जैसे बॉर्डर है और दृश्यम है, आवारापन, धमाल, बहुत सारे मूवीज़ के सीक्वल आए हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड की कोई एक आइकॉनिक मूवी हो पुराने ज़माने की जिसके आप सीक्वल एन्जॉय करना चाहें या रीमेक देखना चाहें, तो वो कौन सी कहानी होगी जो आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। 04397997667 पर मैसेज करके बताइए कि किस बॉलीवुड मूवी का सीक्वल देखने में आपको मज़ा आएगा, किसकी कहानी आगे बढ़ने चाहिए। चलिए जब तक आपके मैसेजेस आते हैं मैं आपके लिए गाना प्ले कर देता हूँ और उसके बाद वापस आएंगे और शो की एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे जो माइग्रेंट लोगों की कहानी और उनके संघर्ष के बारे में है। तो एंजॉय करिए गाने, मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में।

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील। हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने गाने से पहले आज के शो का सवाल पूछा था कि अगर किसी बॉलीवुड मूवी का आप सीक्वल या रीमेक देखना चाहते हैं कि वो कहानी आगे कैसे बढ़ती है तो वो कौन सी मूवी होगी। और एक मैसेज आया है संकेत का फ्रॉम बर्विक, वो लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू सी अ सीक्वेंस ऑफ मुन्ना भाई MBBS। और आई थिंक बड़ी मज़ेदार कहानी होगी अगर मुन्ना भाई संजय दत्त के जो कैरेक्टर था वो एज अ डॉक्टर के रूप में आगे कहानी बढ़े, क्योंकि जितना मुझे याद है एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, लेकिन उसमें उनका थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंट था, हालांकि वो एक ही सीरीज़ की थी। तो लगे रहो मुन्ना भाई दूसरी मूवी थी, मुन्ना भाई MBBS पहली थी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली इस फिल्म का सीक्वल देखना। तो 04397997667 पर आप भी मैसेज करके बताइए कि आगे किस मूवी की कहानी आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे इनफैक्ट। और अगर मैं अपना चॉइस बताऊँ तो गजनी मुझे बड़ी पसंद है जो 2008 में आई थी और उसको भी लगभग 18 साल हो गए। बड़ा ही दर्दनाक एंड था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या कुछ नया रुख बदलता है, वो ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। तो 04397997667 हमारा नंबर है, मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार है। अपने नाम के साथ अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अब जो रिपोर्ट आने वाली है वो दो भागों में है। आज हम मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स की कुछ ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जो संघर्ष से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस और बदलाव की तरफ ले जाती हैं। देवेश सरीन, अर्जुन सकादास और जतिन कोटिचा ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं और एक नई किताब के बारे में भी बताया है जिसमें ऐसे ही माइग्रेंट्स की कहानियाँ शामिल हैं। इस बातचीत के पहले भाग में हम जुड़ेंगे लेखक देवेश सरीन और सन्यासी अर्जुन सकादास के साथ। तो आइए सुनते हैं भव्य पांडे की ये रिपोर्ट।
1: अपने मूल देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू करना कैसा होता है? क्या माइग्रेंट जीवन सिर्फ संघर्ष और सर्वाइवल जॉब्स तक ही सीमित है या इसके पीछे और भी कई अनकही कहानियां होती हैं? इस सवाल का जवाब दिवेश सरीन अपनी नई किताब में आप तक लेकर आ रहे हैं और अन्य दो मेहमानों के साथ आज SBS के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दिवेश सरीन, अर्जुन सखादास और जतिन अशोक कुमार कोटेचा, जो पहचान यानी आइडेंटिटी, मानसिक स्वास्थ्य, पर्पस और नई शुरुआत के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। ये बातचीत मैं आप तक दो भागों में लेकर आऊंगी और इस बातचीत के पहले अंश में आइए आपको मिलवाते हैं अर्जुन सखादास से, जिनकी कहानी दिल्ली के एक संपन्न परिवार से ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल के बीच नई पहचान खोजने और अंततः एक मंक बनने की अनोखी यात्रा है। आज वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समाज सेवा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता भीतर की शांति और उद्देश्य यानी पर्पस में होती है।
2: हरे कृष्णा, मेरा नाम अर्जुन सखादास है। मैं 2007 में स्टूडेंट आया था मेलबर्न में पढ़ाई करने के लिए। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड मेरे मेलबर्न आने से जस्ट पहले। मेरा वीज़ा एप्लीकेशन और मेरा स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुआ
3: जी।
2: अभी जस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव दिस एज अ ट्रिब्यूट टू मेरी जस्ट सिस्टर, शी जस्ट पास्ड अवे फ्यू वीक्स बैक। बिकॉज ऑफ हर आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी। तो उन्होंने मेरे वीज़ा एप्लीकेशन के समय ही में उन्होंने मेरे स्पिरिचुअल जर्नी का सीट सो किया। शी वॉज वेरी वरीड कि मैं अभी मेलबर्न जा रहा हूँ एंड ऑलरेडी आई एम बिट ऑफ अ नॉटी किड, तो अभी मेलबर्न जाके क्या करने वाला ये, क्या और उत्पात मचाएगा पता नहीं है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में ही भगवद्गीता के एक बहुत एसेंशियल टीचिंग्स जिसने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, दैट बेसिकली उससे मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरी सिस्टर ने। फिर मैं यहाँ पे अपने बैचलर्स करने आ गया। एक इंक्विजिटिवनेस ऑलवेज मेरे मन में थी अबाउट लाइफ, क्योंकि एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करता था कि व्हाई गुड थिंग हैपन्स टू बैड पीपल एंड बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिस्पैरिटी, इतना डिफरेंस क्यों है इस सोसाइटी में, कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है बट जितने मेरे पैरामीटर्स हैं खुशी के वो सारे पैरामीटर्स पे ये परफेक्ट है। सो दिस वॉज रियली बगिंग मी, वो मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो मेरे वो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण मेरे आध्यात्मिक जर्नी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। तो मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था तो मैं भगवद्गीता भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहा था। संगत संजायते कामान, तुम्हारी संगत ही तुम्हारी डिज़ायर्स डेवलप करती है। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ पे सेंटली माइंडेड लोगों का एसोसिएशन साथ साथ मिला। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड।
3: जानना चाहूंगी कि अध्यात्म जो वो होता है वो कहीं ना कहीं आपको पर्पस देने में हेल्प करता है, तो ऐसे कई सारे माइग्रेंट्स होंगे यहाँ पर जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो आपके निजी जीवन में आपने क्या कुछ वो चीजें सीखी हैं जो आप उनको आज बताना चाहेंगे?
2: यू नो टू बिगिन विद दिवेश स्पेशली, इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा बिकॉज इनडायरेक्टली मैंने इनसे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपके। तुम अपनी जर्नी में जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करके साथ ले जा सको, दैट मेक्स यू ग्रेट। तुम इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि तुम अपनी जर्नी में बहुत तेज चल रहे हो, तुम इसलिए महान बनते हो बिकॉज तुमने और बहुत लोगों को तेज चलने में मदद करी। तो यही सेम प्रिंसिपल भगवद्गीता का बहुत कोर प्रिंसिपल है। मैं एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसके कारण जिसको यूज़ करके मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट कर रहा हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट कम्युनिटी है बिकॉज वो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी है, बिकॉज उनके पास ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव मच स्किल्स, तो वो बहुत ही लेफ्ट आउट कम्युनिटी है। तो मेरा उस कम्युनिटी के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन ही इस समय ये है कि टू इक्विप देम, समहाउ उनको सशक्त करें, किसी तरह उनकी स्ट्रेंथ किसी तरह बिल्ड हो कि वो जो अचीव करने यहाँ पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाना, पढ़ाई करना, वो इस तरह से करें कि वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली खुद को डैमेज ना करें बस। और उसके लिए स्पिरिचुअल टूल्स कुछ हम प्रिपेयर करते हैं, सर्टन मेडिटेशन, मंत्र, जाप, कीर्तन, सर्टन भगवद्गीता से रिलेटेड टॉक्स होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं कि नेविगेट करने उनके लाइफ के प्रेशर्स में, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पता है व्हाट ऑल दे गो थ्रू, और जो स्टूडेंट के बाद अपनी लाइफ आगे जी रहा है उसको भी पता है कि कितने चैलेंजेस से एक बच्चा गुजरता है यहाँ पे। और बहुत ही लेफ्ट आउट कम्युनिटी है स्टूडेंट कम्युनिटी, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो यस, दैट्स माई पर्पस राइट नाउ, टू समहाउ अदर help this community grow in a way that they turn out to be those migrants jo that will make their country, their parents proud in future. Yeah,
1: दिवेश जी, आप इस किताब के माध्यम से कई सारे माइग्रेंट्स की कहानियों को सामने ला रहे हैं, आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि इस किताब के माध्यम से आपका क्या गोल रहा है।
4: नमस्ते भाविया जी और सारे लिसनर्स को भी। When I think about migrants life, I think about कि जब हम आए थे यहाँ पे उस टाइम पे रोल मॉडल्स नहीं थे कि जिनको देख के हम सोच सकें

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: क्वेश्चन पूछे जाते थे मुझसे कि आप क्यों छोड़ के आते हो सब कुछ यहाँ पे आके इंजीनियर होने के बावजूद भी ऐसे छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हो कैसे अपने आप को मोल्ड करते हो और अभी भी लगता है कि फुली इंटीग्रेट नहीं होते हम जैसे मेरे केस में था कि आई एम नॉट फुली इंडियन नाउ बट आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन इनफ तो वो एक चैलेंज था और इन सबको कर करके तुम्हें एक बॉदर करता थोड़े टाइम के बाद एंड देन यू थिंक कि यार इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए तो इन अ वे वो माइग्रेंट्स लाइफ बन गया
2: क्या लगता है आपको कि ये जो समुदाय है माइग्रेंट्स का ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक पक्ष ये भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया की ऑथेंटिसिटी को थोड़ा सा डगमगा रहा है आपका इसको लेके क्या मानना है
1: भावे जी जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं जानता हूँ वो माइग्रेंट्स पे ही ग्रो की है एंड अगर आप बुक का फॉरवर्ड भी पढ़ेंगे जो साइमन कैटिज ने लिखा है द लकी कंट्री वी कॉल The lucky country is built on the compound interest of migrants over the years as well. So, with all due respect to everyone who's been the foundation of it, जो लोग यहाँ पे आए हैं सब ने बहुत effort डाला इस country को grow करने के लिए तो different nationalities के लोगों ने इसको घर बनाया और अब सबकी families Australia का part हैं तो I would say कि migrants have played a big role जहाँ पे आके हम jobs में add करते हैं value add करते हैं और कैसे लीडरशिप पोजीशंस में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर्स जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं जो मैं बिलीव करता हूँ कि माइग्रेंट्स ने बहुत वैल्यू ऐड की है एंड दैट नीड्स टू बी शोकेस्ड विद व्हाट दे हैव अचीव देखिए जतिन भाई जो आज मेरे साथ हैं और अर्जुन प्रभु दे कैन ऑल्सो शेयर मोर ऑन इट बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये हमारे सिर्फ 5 सेंट्स हैं आई एम जस्ट लिटिल दिवेश मेरे मन में था कि कॉर्पोरेट्स में काम करके मैंने बहुत सुना कि दिस ऊबर ड्राइवर कुड बी योर कज़न और दिस 7-11 गाय कुड बी योर कज़न मैं सिर्फ समझाना चाहता था कि हमारी लाइफ 20 साल की उम्र में आधा बाल सफ़ेद कब हो गए पता नहीं लगा कि फैमिली को सपोर्ट करना है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों को यहाँ बुलाना है और हमारे को कभी वो वॉइस नहीं मिलती और कभी हम इसको देखते नहीं हैं एज माइग्रेंट्स मेरे मन में ये था और आने वाले माइग्रेंट्स के लिए रोल मॉडल्स मिलेंगे तो वो हमसे भी बेटर करेंगे और एक कम्युनिटी आगे बढ़ेगी
3: दोस्तों इस बातचीत के दूसरे अंश में हम बात करेंगे जतिन कोटेचा के साथ जो कि एडवेंचर यानी रोमांच और नई चुनौतियों के जरिए लोगों को प्रेरित करते आए हैं कि सपनों को कल नहीं आज जिया जाता है बने रहें SBS हिंदी के साथ
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और अभी अभी आपने सुनी भव्य पांडे की रिपोर्ट जिसमें आज वो लेकर आए हैं कुछ मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स के कहानियां जो संघर्ष से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी पर्पज़ और बदलाव की तरफ ले जाती हैं इसका पहला भाग अभी आपने सुना और दूसरा भाग हम आपको कुछ ही देर में सुनाएंगे लेकिन उससे पहले एक गाना आएगा एक एड ब्रेक आएगा और उसके बाद तो आज के शो में हमने ये सवाल पूछा था कि अगर आप किसी आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी का रीमेक या सीक्वल देखना चाहते हैं तो वो कौन सा होगा और बड़े मैसेजेस आए हैं और उसमें से एक मैसेज आया है कि वीर ज़ारा का सीक्वल देखने में मज़ा आएगा कि वो कहानी आगे बढ़ती है ये मैसेज हमें भेजा है सिडनी से चेतन शाह ने और एक और मैसेज आया है क्रेगी बर्न से राजेंद्र वोरा लिखते हैं कि हम पूरा परिवार फिल्म बागबान का सीक्वल देखना चाहते हैं बागबान का तो आप भी बताइए कि अच्छा एक और आया है कमल जी का सिडनी से वो लिखते हैं कि वो धुरंधर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं तो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं 04397997 पर मैसेज करके बताइए कि आप किस मूवी की कहानी को आगे देखना चाहते हैं कि आगे बढ़कर उसमें क्या होता है 04397997 हमारा नंबर है और अब वक्त हो गया है एक गाने का आमिर खान की एक मूवी का ये गाना है तुरकल्या लाल सिंह चड्डा से इसे एंजॉय करिए और वापस आकर एक एड ब्रेक लेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
6: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और एड ब्रेक से पहले आपने सुना था भव्य पांडे की रिपोर्ट, जिसमें मेलबर्न में बसे कुछ इंडियन माइग्रेंट्स की कहानी थी। और आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हम जुड़ते हैं जतिन कोटेचा से, जो खुद को डेलिबरेट एडवेंचरर बताते हैं और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक पर चढ़ने की यात्रा कर चुके हैं। आइए सुनते हैं भव्य पांडे की ये रिपोर्ट, इसका दूसरा और अंतिम भाग है ये।
7: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द माइग्रेंट लाइफ बुक पर। तो आइए जानते हैं कैसे जतिन कोटेचा ने ऑस्ट्रेलिया में एक सफल जीवन ही नहीं बनाया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संकटों ने उनको जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव यानी नजरिए से देखने में मदद की। जहां लोग अपनी 9 to 5 की नौकरी में फंसे रहते हैं, जतिन जी कई सारी ऊंचाइयों को छू कर आ चुके हैं।
8: मेरा एक्सपीरियंस और मेरा टेक अब तक इन दोनों से तो बहुत अलग रहा। देखिए, मेरी जर्नी एक टिपिकल माइग्रेंट की तरह ही रही, जो आज के ज़माने के माइग्रेंट, मतलब के स्टूडेंट्स की तरह, आप चार बाहर ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, देन यू एस्टैब्लिश योर लाइफ। मेरी जर्नी चालू हुई थी यूके में 2001 में। मैं वहाँ पे गया था पढ़ने के लिए। आई स्टडीड, वर्कड, काम धंधा भी किया वहाँ पे, इवन मेट माई वाइफ ओवर देयर। और वहाँ पे एक लाइफ एस्टेब्लिश की। वहाँ से इंडिया थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा समय रहा, फिर इवेंचुअली वी वर इन ऑस्ट्रेलिया। थ्रू दिस जर्नी एक प्रिंसिपल तो था ही, जो हमेशा सबका होता है, कोई भी माइग्रेंट जो हमारी तरह जाता है, कि बाहर जाना है, करियर एस्टेब्लिश करना है, क्या बिजनेस करना है, पैसे कमाने है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। हम हमारी स्टोरी की शुरुआत वहाँ से करते हैं। कॉलेज पास किया, कॉलेज में गए, वहाँ से क्या हुआ। पर जब एक पॉइंट आता है लाइफ में, जब वो बोलते हैं ना, यू हिट अ ब्रिक वॉल, तब पता चलता है कि यार सच में स्टोरी यहाँ से चालू हुई थी या कहीं पहले हुआ था। एंड मेरे साथ वही हुआ। और मुझे, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सब सपने होते हैं, वी आर वेरी इनोसेंट, तब हमारे लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, टाइम कैसे निकलेगा, लीव कैसे मिलेगी काम से, वो सब नहीं मायने रखता। हमारे लिए हमारे सपने मायने रखते हैं। किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है, मेरे जैसे लोग को मुझे पहाड़ चढ़ना था, मुझे मोटरसाइकिल चलाना था। फिर होता है जैसे बोलते हैं ना, शर्मा जी का लड़का, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड देन सडनली यू आर इन द सेम रेट रेस एज एवरीवन एल्स। व्हेन आई हिट द ब्रिक वॉल आई वेंट बैक, और तब सोचा यार, मेरे तब मैंने ये नहीं सोचा था, जो मेरे ओरिजिनल सपने थे वो क्या थे, नहीं मोटरसाइकिल चलाना है। तो देन आई रियलाइज के मैं क्या, मैं हम जो लाइफ जीते यहाँ पे, एक मैंने कहीं पे सुना था कि यू बाय द बेस्ट कार, यू आर सिटिंग इन इट इन ट्रैफिक एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द ट्रैफिक। जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप जा रहे हो वहाँ पे, तो वो चेंज ऑफ एटीट्यूड तो वो दैट्स वो मेरे साथ हुआ कि चलो मैं जो भी कर रहा हूँ आई डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ कि मैं आई एम लाइक 70-80 ईयर्स ओल्ड फिर सोचूँ मैं शायद ये कर पाता अभी कर पा कर सकता आज के दिन वो कर सकता हूँ क्या एंड देन आई स्टार्टेड दिस आई थॉट अबाउट इट और फिर पहला सपना था मोटरसाइकिल चलाना मतलब कुछ कहाँ पे जाएंगे एंड देन आई समहाउ केम अक्रॉस के भाई चलो ऑस्ट्रेलिया में भी एक रोड है 2022 में वो प्रोजेक्ट चालू किया वो राइडिंग अराउंड ऑस्ट्रेलिया उसमें भी एक ही वही चैलेंज था टाइम कैसे निकालूंगा उसके लिए फंड्स कैसे आएंगे क्या मैं इतना कर सकता हूँ फिजिकली कर सकता हूँ क्योंकि इतने साल जब हम कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट काम करते हैं रोजमर्रा की चीज़ में पड़ते देन यू लूज योर स्ट्रेंथ आप फिजिकल स्ट्रेंथ भी लूज करते हो मेंटल स्ट्रेंथ भी लूज करते हो बच्चे होते हैं दे कैन स्टिक ऑन समथिंग एंड कीप ऑन डूइंग इट फॉर द होल डे यू कांट पाँच मिनट आप करो फिर बाद में यू कॉन्स्टेंटली थिंक ये काम है वो काम है दिन के दस काम खत्म करने हैं इफ आई वेयर टू फॉल सिक देन आई हैव टू तो मुझे दो महीने ब्रेक लेना ही पड़ेगा समझ लो मैं बीमार हो चुका हूँ अभी मैं बीमार हो चुका हूँ आज मैं ब्रेक लेके थोड़ा जी भी लूँ टाइम का प्रॉब्लम सोल्व हुआ फंड्स का मैं सोच रहा था कैसे होगा फिर जैसे मैं पेन पेपर लेके बैठा दैट रियलाइज उतना भी नहीं है तो मैं सोचा एक काम करता हूँ फर्स्ट स्टेप लेता हूँ शायद दूसरा स्टेप अपने आप ही आ जाएगा तो पहले दिन ख़त्म हुआ फ्रेंड्स फैमिली लोग सब फर्स्ट दिन आजू बाजू ट्रैवल कर रहे थे वी स्टेड टुगेदर दूसरे दिन जब मैं वहाँ से पोर्ट कैम्बल से निकला एंड व्हेन आई वाज लुकिंग बैक तब रियलाइज़ हुआ कि अब मैं मेरा ड्रीम जी रहा हूँ अभी मैंने चालू किया है खुद का ड्रीम जीने के लिए वो मिरर में पीछे देख रहा था लोग देख रहे बाय कर रहे और दूसरा थॉट यह आया लोगों को देख के अभी घोड़े पे चढ़ गया हूँ अब तो वापस नहीं जा सकता पहले ये डर था कि चलो मैं 3000 तक पहुँच सकता हूँ 3000 मीटर तक जब वहाँ पे पहुँचे फिर लगा ना और ज़्यादा कर सकते हैं एंड लास्ट ईयर आई हिट एज फार एज 6,500 मीटर्स आई वॉज एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो चिली में है अनफॉर्चुनेटली मैं ख़त्म नहीं कर पाया पर आई वॉज सिटिंग एट 6,500 मीटर वो वहाँ पे आधे घंटे बैठा था मैं और मैं स्माइल कर रहा था चलो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया अब अगर जो मैंने ना बोल दिया था नहीं नहीं नहीं होगा नहीं पॉसिबल नहीं यू नो और कुछ काम है एयर मैनेज नहीं होगा तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता उतनी ऊंचाई पे जब आप पर्टिकुलरली ज्वालामुखी पे बैठे हो तो आजू बाजू पहाड़ नज़दीक नहीं होते दूर होते तो वहाँ से देख के वही दिख रहा था कि हाँ आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले सोचा कि मुझे अपने सपने जीने हैं
7: SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे
6: SBS हिंदी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं नबील और अब शो का अंतिम मिनट बचा है सिर्फ और आपसे आज हमने एक सवाल पूछा था कि कौन सी बॉलीवुड मूवी का आप सीक्वल देखना चाहेंगे कि कहानी कहां आगे बढ़ती है उसमें कई लोगों ने मैसेज किया और एक आखिरी मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगा पराग फ्रॉम मेलबर्न लिखते हैं कि हाय नबील आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 3 Idiots के जो सीक्वल होगा पार्ट 2 उसका की इंतज़ार है एंड पॉसिबली इट्स स्क्रिप्ट इज़ रेडी तो बड़ा मज़ेदार कहानी हो सकती है जब 3 Idiots अगर उसकी सीक्वल बनती है तो बड़ा मज़ा आएगा 04397997767 ये हमारा नंबर है और आप भी हर दिन हर शाम 5 से 6 बजे के बीच इसमें संदेश अपने भेज सकते हैं अपने नाम के साथ और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ऑन एयर पढ़ें और अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट होता है तो उसकी भी कोशिश की जाती है कि हम उसको प्ले करें चलिए मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा बने रहिए SBS हिंदी पे मैं हूँ नबील और इस वादे के साथ कि आपकी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और शाम बने रहिए SBS हिंदी पर
9: नाउ दैट यू आर अप टू डेट
10: लेट्स किक द म्यूजिक बैक इन
9: वी आर गोइंग नॉन स्टॉप
10: ऑल नाइट
11: आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड
9: फर्स्ट अप इट्स द बॉलीवुड सेशन 2 hours of hits right now on SBS South Asian

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood session on SBS South Asian.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सारा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेत की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सख्त जमीन को फिर।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

बात की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

साला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया।

0: SBS South Asian.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Hey yo, G-Funk.

करे हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली स्टाइल।

0: Pradesh.
1: Your news from here and hits from home.

SBS South Asian.

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

Let's go!

0: Rapper 2 Dancing Far and Style
1: Slow down boys

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।